listening to Radio Olive 106.3 FM. अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

listening to Radio Olive 106.3 FM. Geo Bindas.

लोग सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. अब सुनिए ओलिव का जबरदस्त है.

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM
1: बिंदास
2: Awesome.
1: रेडियो ओलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर
3: क्या बात है सर क्या बात ये बात है
2: Awesome.

सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास

0: वाओ। हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: नमस्कार, मैं हूँ आर माधवन।
2: हाय, दिस इज विपाशा बासु।
3: हाय, आई एम लक्ष्मण राव।
4: हाय, मैं हूँ प्रियंका चोपड़ा।
5: हाय, दिस इज दिशा पार्डी।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम।
0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन, रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम।

0: आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड द हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.
1: दोहा बैंक और लुलू लाए हैं शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस.
2: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलू शॉपिंग वाउचर.
1: लुलू स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलू पॉइंट्स के फॉर्म में.
2: प्लस इंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माई बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस. बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलू पर मिनिमम कतरी रियाल 1 स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए.
1: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026. दोहा बैंक लुलू Mastercard Platinum. Shopping now more rewarding. TNC apply.
3: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tepkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
4: सिर्फ नंबर वन लोग सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.

0: कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोड़े तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
2: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
1: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
2: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
1: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव and win.

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम
1: बिंदास
2: ओसम रेडियो ओलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द

0: गानों के साथ या हैप्पीनेस बढ़ रही है, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।
1: दोहा बैंक और लुलु लाए हैं शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
2: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलु मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलु शॉपिंग वाउचर।
1: लुलु स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलु पॉइंट्स के फॉर्म में।
2: प्लस इंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माय बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलु पर, मिनिमम कतरी रियाल 1 स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
1: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026। दोहा बैंक लुलु मास्टर कार्ड प्लैटिनम। शॉपिंग नाउ मोर रिवॉर्डिंग। TNC अप्लाई।

0: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: दोहा बैंक और लुलू लाए हैं शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
2: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलू शॉपिंग वाउचर।
1: लुलू स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलू पॉइंट्स के फॉर्म में।
2: प्लस इंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माई बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलू पर मिनिमम कतरी रियाल 1 स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
1: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026। दोहा बैंक Lulu Mastercard Platinum. Shopping now more rewarding. TNC apply.
3: Hi, this is Air Rahman.
4: Air Rahman.
3: Radio. Listen to my songs on 106.3 Radio Olive.
4: Jio Bindas.
5: Olive Suno Radio Network. Qatar's number one Asian radio network.
6: I'm in number one. Radio Olive.
5: You are listening to Radio Olive. 106.3 FM.

0: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
2: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन। रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है। कॉल 4411133। ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा। नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम।
3: आप सुन रहे हैं रेडियो ऑलिव 106.3 FM, जियो बिंदास।

0: हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: योर डेली सरप्राइज इज हियर। अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज। क्लेम करो ओरेडू ऐप पर। एक्सपीरियंस मोर विद ओरेडू।
2: कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम।
3: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे। जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस।
2: जीतने के चार रास्ते। पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए। हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन।
3: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है।
2: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन। और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट।

0: आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड द हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.
1: दोहा बैंक और लुलू लाए हैं शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस.
2: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलू शॉपिंग वाउचर.
1: लुलू स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलू पॉइंट्स के फॉर्म में.
2: प्लस एंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माई बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस. बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलू पर मिनिमम कतरी रियाल एक स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए.
1: ऑफर वैलिड टिल 30 June 2026. दोहा बैंक लुलू Mastercard Platinum. Shopping now more rewarding. TNC apply.

0: यहाँ से, लेकिन सोचो कितनी दूरी है, कैसी ये मजबूरी है।
1: You are listening to Radio Olive 106.3 FM, Geo Bindas.

0: कभी खुद के कंधे पर हाथ रख कर कहा है कि क्या काम किया छोड़े तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन। रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है। कॉल 4411133। ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा। नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम।
2: नमस्कार, मैं हूँ आर माधवन। आप सुन रहे हैं रेडियो ऑलिव 106.3 FM।
3: यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 FM, जियो बिंदास।

0: गानों के साथ या हैप्पीनेस बट रही है, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटीजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास। दोहा बैंक और लुलू लाए हैं शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
1: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलू शॉपिंग वाउचर।
0: लुलू स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलू पॉइंट्स के फॉर्म में।
1: प्लस इंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माई बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलू पर मिनिमम कतरी रियाल 1 स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
0: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026। दोहा बैंक लुलू मास्टरकार्ड प्लैटिनम, शॉपिंग नाउ मोर रिवॉर्डिंग। टीएनसी अप्लाई। आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन, रेडियो ओलिव 106.3 FM।

0: हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो पॉलर, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
2: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
1: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
2: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
1: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन। रेडियो ऑलिव पर फ्रेश फ्रेश फ्रेश फ्रेश फ्रेश है ये गाना, फ्रेश है, फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आवर ये गाना।

0: आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड दी हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.
1: योर डेली सरप्राइज इज हियर. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरेडू ऐप पर. एक्सपीरियंस मोर विद ओरेडू.

0: कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोटे तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम।
2: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे। जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस।
1: जीतने के चार रास्ते। पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए, हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन।
2: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है।
1: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन। और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट।
3: हाय, मैं हूँ विवेक आनंद ओबेरॉय। यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव जियो बिंदास।
4: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क। सिर्फ नंबर वन लोग सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन, रेडियो ऑलिव 106.3 FM।

0: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: योर डेली सरप्राइज इज हियर। अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज। क्लेम करो ओरेडो ऐप पर। एक्सपीरियंस मोर विद ओरेडो।

नो आपने बहुत कोशिश की थी कि ये वीकेंड अपने खुद के साथ स्पेंड कर लो, लेकिन जो लॉन्ड्री बास्केट में कपड़े पड़े हैं वो वीकेंड को वीकेंड रहने कहाँ देते हैं। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड वीकेंड जो है वो जा चुका है। आई नो आपको दुख हो रहा है मैं जितनी बार ये बात कह रही हूँ, लेकिन आपको नहीं, सच मानिए मैं खुद को यकीन दिला रही हूँ कि कशिश उठ जाओ, हो गया है अब वीकेंड खत्म, अब काम पे वापस लौटना पड़ेगा और अब एक हफ्ते तक इंतजार करना पड़ेगा। खैर अगर आप उन लोगों में से हैं जिनकी सैटरडे को भी छुट्टी होती है तो फिर मुबारक हो आपको, थोड़े और एक्स्ट्रा घंटों की नींद मुबारक हो, थोड़ा और एक्स्ट्रा चैन सुख मुबारक हो। आई होप कल आपने रेस्ट किया होगा, खाना वाना खाया होगा, टीवी देखा होगा, मूवीज देखी होंगी, बाहर गए होंगे और फिर लॉन्ड्री आज के लिए छोड़ दी होगी। लेकिन आज भी देखो दुख तो होगा, मतलब मैं जो है पूरे हफ्ते इस खौफ में रहती हूँ कि बस अगला आने वाला वीकेंड जो है वो लॉन्ड्री की वजह से या घर साफ करने की वजह से या रूम को जो है वो सेट करने की वजह से मेरा वेस्ट ना हो जाए। मतलब मैंने एक दो वीक पहले कोशिश की थी कि यार चलो रहने देते हैं, मतलब वीकेंड को वीकेंड की तरह इंजॉय करते हैं, मूवी देखते हैं, बाहर जाते हैं एंड ये जो रूम फैला हुआ है इसको ऐसे ही रहने दो, क्या हो जाएगा ज़्यादा। लेकिन सच मानिए अगर वीकेंड पे आपने अपने घर को अपने रूम को जो है नहीं संभाला तो आपका पूरा जो आने वाला हफ्ता होता है ना वो नेगेटिव हो जाता है। तो देखो ठीक है भले ही थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगा लो लेकिन सफाई कर लो, लॉन्ड्री कर लो, बाकी का हफ्ता जो है वो सॉर्टेड हो जाएगा। तो बस खुद को यही दिलासा देते हुए आज के दिन की शुरुआत, आज के शो की शुरुआत करते हैं। लाइफ मस्त है शो की शुरुआत करते हैं, आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बना देते हैं। फिलहाल अमेजिंग वाले गानों से शुरुआत जो है वो हम करने वाले हैं, सो ये गाना एंजॉय करिए। विशाल मिश्रा की आवाज में ये ट्रैक है, हाँ तू है, तो इसे एंजॉय कीजिए। खैर बहुत सारी बातचीत जो है वो हम करने वाले हैं, किस तरीके से मुझे फोमो फील हो रहा है इस पर भी बात करेंगे एंड आप लोगों के मैसेजेस भी पढ़ूंगी मैं। तो बस कहते रहो जियो बिंदास।

0: वेडिंग वाइब हो गई यार ये तो, मतलब मेरे दिमाग में अरिजीत सिंह और लाल जोड़ा यानी जो वेडिंग रेड ड्रेस होता है दोनों साथ में आ गए यार। वेलकम जी 106.3 रेडियो आलव पर, मैं हूँ आपकी कशिश और शो आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई हूँ। एंड मैं ना क्योंकि कल मैं काफ़ी थक गई थी, इतना सारा काम किया, साफ सफाई की, एंड ऐसा लग रहा था कि वीकेंड अच्छे से स्पेंड नहीं कर पाई खुद के साथ, तो काफ़ी बुरा लग रहा था कि ये क्या कर रही हूँ लाइफ में। एंड रात होते होते एक छोटा सा ब्रेकडाउन भी हो गया था मेरा कि यार अब नहीं हो रहा। और सुबह भी मैं उसी मूड से आई थी, लेकिन आप लोगों से बातचीत करते हुए सब ठीक हो जाता है। पर उसके बाद फिर मैंने आसमा जी का एक मैसेज पढ़ लिया जो मैं आप लोगों के साथ फिर से एक बार पढ़ना चाहती हूँ। उन्होंने लिखा है एक रैंडम मैसेज में कि यू मे बी एग्जॉस्टेड, यू मे बी डिस्करेज्ड, यू मे फील अनकम्फर्टेबल, नो मैटर वॉट योर बेस्ट ऑप्शन इज टू मूव फॉरवर्ड वन टाइनी स्टेप एट अ टाइम, गुड मॉर्निंग। एंड मुझे लगता है इससे ज्यादा मुझे और किसी चीज की जरूरत नहीं थी, ये मोटिवेशन और चाय मेरे लिए काफी है ये अगले एक हफ्ते तक मेहनत से काम करने के लिए। सो थैंक यू सो मच आसमा जी, बस जैसे आपने मेरा जो है दिन अच्छा किया है, आई होप मैं आप सबका दिन और बेहतर कर पाऊं एंड आपकी लाइफ को मस्त बना पाऊं। फिलहाल बात कर लेते हैं आज के टेम्परेचर की कि इस वक्त जो है टेम्परेचर कितना हो रहा है, मौसम कैसा रहने वाला है आज। सो अगर हम बात करें सो आज इस वक्त का करंट टेम्परेचर जो है वो हो रहा है 40 डिग्री सेल्सियस एंड आज का हाईएस्ट टेम्परेचर 41 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है एंड लोएस्ट टेम्परेचर 31 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। यानी कंपैरेटिवली गर्मी थोड़ी सी कम पड़ेगी, कल तो हवा भी चल रही थी लेकिन गरम गरम हवा चल रही थी, ऐसा लग रहा था कि कढ़ाई में कुछ बना रही हूँ और भाप जो है वो मेरे मुंह पे पड़ रही है। अजीब अजीब चीजों से कंपेयर कर देती हूँ ना मैं यार, बस इसीलिए इस जो है गर्मा गर्म मौसम के बीच जो है कूल सॉन्ग ऑफ द आवर सुन लेते हैं, दिल को थोड़ी ठंडक पहुंचा देते हैं।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द

गाने का नाम अगर तुम साथ हो, सो ये गाना एंजॉय करो, मैं तो आपके साथ ही रहने वाली हूँ। देखो, सो बस आपकी कशिश के साथ कहते रहो जियो बिंदास और लौट के वापस आओ।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
1: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
0: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
1: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
0: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव and win.

देखिए गाने की वजह से जागे जागे हैं ये बोलना पड़ रहा है, वरना तो अभी भी मैं अपने रूम के गद्दे पे सोई हुई हूँ। उठ के तो सिर्फ मेरा शरीर आया है यहाँ पे, और ये बात कोई पहली बार नहीं बता रही हूँ मैं आपको, ये तो मैं हर रोज आपको आगे बताती हूँ। वेलकम जी, मैं हूँ आपकी कशिश 106.3 रेडियो ऑलिव पर, शो लाइफ मस्त है लेकर आ गई हूँ आपके लिए। एंड जिस हिसाब से बिहेव किया जा रहा है मेरे साथ इंस्टाग्राम पे और जिस तरीके से बिहेव किया जा रहा है मेरे साथ ऑफिस में, मुझे नहीं रहना है। अच्छा ही होता जो मैं अपने रूम में सो रही होती, उठना ही नहीं चाहिए था मुझे, क्योंकि पूरी कायनात पूरी दुनिया जो है सिर्फ मुझे ये बताने में जो है तुली हुई है, मुझे ये फील कराने में तुली हुई है कि कशिश कितने पीछे हो तुम, तुमने अभी तक मैं वापस आऊंगा देखी नहीं, रिलीज हो गई सबने देख ली, जितने लोग हो सकते थे सबने देख ली है, सिर्फ मैंने नहीं देखी। एंड सब मुझे जो है ये फोमो फील करा रहे हैं कि कशिश तुमने नहीं देखी, ओ माय गॉड तुमने मैं वापस आऊंगा नहीं देखी, देख लूंगी यार देख लूंगी। तो हमारे ऑफिस से भी लगभग सभी लोग कल परसों रादर जो है मैं वापस आऊंगा देखने के लिए गए, एंड मेरे इंस्टाग्राम पे जितने मेरे दोस्त हैं सब भी देखने गए, एंड सब ने पूरी की पूरी मूवी जो है वो उठा के इंस्टाग्राम की स्टोरियों पे डाल दी। मतलब मेरे लिए कुछ रहने मत दो, मतलब अगर मैं ये कह रही हूँ कि मैंने मूवी देखी है तो मैंने देखी है, लेकिन थिएटर में नहीं देखी है, मैंने सबकी स्टोरी पे देखी है, सीन बाय सीन सबने स्टोरी पर डाला है अपने रिव्यू के साथ कि उन्हें कैसी लगी, वो कितना रो रहे हैं, वो कितना हंस रहे हैं सब। खैर अगर आपने ये मूवी नहीं देखी है या देखी है, जो भी जिस भी टीम से आप बिलोंग करते हो, 3311063 पर आके मुझे बता दो, थोड़ी बातचीत इस मूवी के बारे में कर लेंगे। खैर रिव्यूज तो ये आ रहे हैं कि इम्तियाज अली की पिछले 20 सालों में बनी हुई सबसे बेहतर मूवी, सबसे बेस्ट मूवी इस मूवी को कहा जा रहा है, एंड लोग जो है तारीफ करते नहीं थक रहे। जब वी मेट, व्हाट जब वी मेट, तमाशा व्हाट तमाशा, इन सब मूवीज से ऊपर है ये मूवी। अगर कोई इंसान इतना बड़ा स्टेटमेंट दे रहा है, और मेरे वो दोस्त जो तमाशा मूवी के लिए जो है इतनी ज्यादा क्या बोलूं मैं उसे, प्रोटेक्टिव है कि तमाशा मूवी के बारे में आप कुछ नहीं कह सकते उनके सामने, वो अगर मुझसे आगे कह रहे हैं कि मैं वापस आऊंगा, एक ऐसी मूवी है जो इम्तियाज अली ने आज तक कभी बनाई ही नहीं, तो देखो देखनी पड़ेगी मूवी। आप बताइए आपको क्या लगता है, किस तरीके से आपने मूवी देखी नहीं देखी, कितना एक्साइटेड हो ये मूवी देखने के लिए, 3311063 पर आके बता दो। फिलहाल विशाल दुदलानी के पास में दोस्ताना मूवी से जाने क्यों गाना आ रहा है आपके रेडियो सेट पर, इसे एंजॉय करो और आपकी कशिश के साथ कहते रहो जियो बिंदास। वैसे मूवी का रिव्यू तनीषा दे देंगे आपको।

का ये जो ट्रैक है ये जो अब लॉन्च हुआ था तो मेरी इंस्टाग्राम पे सिर्फ यही आ रहा था, तो मैंने यार सोचा कि क्यों ना आपको ये सुना दिया जाए, क्योंकि इंटरनेट पे कुछ अच्छी चीजों में से एक अच्छी चीज ये, वरना इंटरनेट पे तो खैर कुछ मूवीज का के जो है ट्रेलर भी लॉन्च हुए हैं जो हमें बिल्कुल अच्छे नहीं लगे, बात करेंगे इस पे। वेलकम बैक 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कशिश, शो आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई हूँ। एंड मैं जिन इंटरनेट पे कुछ इरिटेटिंग चीजों की बात कर रही थी उसमें से एक इस वक्त नंबर वन पे चल रहा है, वेलकम टू द जंगल इस मूवी का ट्रेलर। आई नो आपको पता है, आपने ये ट्रेलर देख लिया होगा एंड ऑलरेडी हम इस पर पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन ये जो है बार बार ऐसे घूम फिर के मेरी आंखों के सामने आ जाता है एंड मुझे इतनी इरिटेशन हो रही है ना, बिकॉज एक आपकी होती है चाइल्डहुड मेमोरी जो बहुत ही अच्छी होती है एंड फिर उसको खराब करने का जो काम किया जाता है। आई नो बहुत पैसे लगे हैं, बहुत एफर्ट्स लगे हैं, बहुत लंबी चौड़ी कास्ट जो है वो लाई गई है एंड बहुत अच्छा करने की कोशिश की गई है, लेकिन यार मेरे बचपन की एक बहुत अच्छी मूवी का सीक्वल है ये। मेरी उम्मीदें बहुत ज़्यादा थी वेलकम बैक जो था मूवी उसमें भी, फिर भी चलो कर दिया था जस्टिस, मुझे वो भी मूवी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी थी, लेकिन वेलकम टू द जंगल ने तो सारी हदें पार कर दी। मुझे ये मूवी उतनी प्रॉमिसिंग नहीं लग पा रही है ट्रेलर देखने के बाद, पर हो सकता है मैं ऑलरेडी पहले इतना अपने दिमाग में एक प्रस्पेक्टिव बना चुकी हूँ कि जो सीक्वल्स होते हैं वो अच्छे नहीं होते, शायद इसलिए भी हो सकता है। आपको ये ट्रेलर कैसा लगा बताइए मुझे 3311063 पर। ये मूवी देखने जाने का प्लान कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, जाओगे या नहीं जाओगे ये भी मुझे बता देना। खैर मेरी मम्मी ने मुझे है ना इस वाले नंबर पे 3311063 पर मैसेज करके ये कहा है कि हम आज प्लान कर रहे हैं कि मैं वापस आऊंगा देखने जाएंगे। मम्मी या मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पे भी बता सकती थी। मैंने अपने लिस्नर्स से पूछा था कि आप मुझे बताइए कि आपने ये मूवी देखी है नहीं देखी है, देखने जाने वाले हो या नहीं जाने वाले हो, और मेरी मम्मी मुझे बता रही है इस वाले व्हाट्सएप पे। वाओ रेडियो पे बात करते हैं मैक्सिमम, मेरी मम्मी मुझसे आजकल कॉल पे थोड़ी ना बात करती है, जितनी बात करते हैं हम रेडियो पे करते हैं। मुझे उनसे कोई नाराजगी होती है मैं रेडियो पे आप सबके साथ उनसे शेयर कर देती हूँ, बस यही चल रहा है। देखिए रेडियो की पावर जो है, इंडिया में बैठे बैठे मेरी मम्मी मुझे रेडियो पे सुन रही है, आप भी सुन सकते हैं अगर आप जो है कतर से बाहर जा रहे हैं तो, हमारा एक प्यारा सा ऐप है उसे डाउनलोड करके। बाकी इंस्टाग्राम पे भी हम पूरे टाइम जो है कनेक्टेड रह सकते हैं, रेडियो ऑलिव के इंस्टाग्राम हैंडल पर आप जा सकते हैं, वहां जाके फॉलो बटन दबा लीजिए, मैं आपको मिल जाऊंगी दिख जाऊंगी। फिलहाल फ्रेश फ्रेश गाने जो है वो सुन लेते हैं।

0: Fresh song of the hour.
1: ये गाना।
2: Welcome to the jungle की बात कर रहे थे और उसी मूवी का टाइटल ट्रैक आपके रेडियो सेट्स पर आ रहा है। इसमें थोड़ी सी वाइब है तो शायद हो सकता है मूवी में भी हो, क्या पता। ये गाना एंजॉय करो और कहते रहो जियो बिंदास।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। दोहा बैंक और लुलु लाए है शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
1: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलु मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलु शॉपिंग वाउचर।
0: लुलु स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलु पॉइंट्स के फॉर्म में।
1: प्लस इंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माई बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलु पर मिनिमम कतरी रियाल 1 स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
0: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026। दोहा बैंक लुलु मास्टर कार्ड प्लैटिनम शॉपिंग नाउ मोर रिवॉर्डिंग। TNC अप्लाई।

0: माशाल्लाह कहने का ही मन करता है इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया के अजीब और गरीब ट्रेंड्स को देखकर। एक था टाइगर मूवी का ये ट्रैक, आपने एंजॉय किया। 106.3 रेडियो ऑलिफर, मैं हूँ आपकी कशिश और शो आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई हूँ। एंड सच में मेरे मुंह से सिर्फ माशाल्लाह निकलता है कि क्या ट्रेंड लेकर आ रहे हैं एक के बाद एक लोग। वाह वाह वाह वाह। अभी जो है सोशल मीडिया पे एक नया ट्रेंड जो है वो छिड़ चुका है, जहां पर लोग खुद को खाने पीने की चीजों से कंपेयर कर रहे हैं कि अगर मैं कोई खाने की चीज होती सो मैं ना फ्रेंच फ्राइज होती, मैं पोटैटो फ्राइज होती या मैं पोटैटो चिप्स होती, बिकॉज मेरी पर्सनैलिटी इतनी क्रिस्प है, सब मुझे पसंद करते। मतलब फूलों से, पौधों से, बॉलीवुड के कैरेक्टर्स से खुद को कंपेयर करके खत्म नहीं हुआ था कि इन्होंने खाने से खुद को कंपेयर करना शुरू कर दिया है। सो हमने सोचा कि क्यों भाई, क्यों इस ट्रेंड में पीछे रहा जाए। सो मैं तो खुद को कंपेयर करने वाली हूँ किसी खाने की चीज से। आप मुझे बताओ कि अगर आप कोई खाने पीने की चीज होते तो वो क्या होते, नॉन वेज, वेज, फ्रूट, स्वीट, जो आपको सही लगे आप वो मुझे बता सकते हैं 3311063 पर मैसेज करके। ऑडियो नोट भेजना चाहे तो वो भी भेज सकते हैं। काफी सारे लोगों ने मुझे ये कहा कि कशिश आप नंबर बहुत जल्दी बोल देते हो सो मुझे याद नहीं हो पाता है, तो इसीलिए मैं धीरे से एक और बार बोल देती हूँ 3311063। ये हमारा व्हाट्सएप वाला नंबर है, इस पर आकर बताइए कि अगर आप कोई खाने पीने की चीज होते तो क्या होते। मतलब फ्रूट्स हो सकते हो, जूस हो सकते हो, कोल्ड कॉफी हो सकते हो, बर्गर हो सकते हो, पिज्जा हो सकते हो, अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से कोई एक चीज बता दो। मैं आपको बताती हूँ, अगर मैं कोई खाने की चीज होती तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं पानी पूरी होती, बिकॉज एक तो देखो मैं बहुत ही अफोर्डेबल हूँ, मतलब अगर आप मुझे थोड़ा सा अटेंशन दोगे तो मैं आ जाऊंगी आपके पास, तो इतनी कोई मेहनत नहीं लगेगी आपको मुझे ढूंढने के लिए। दूसरी चीज कि मैं ना बहुत ही ज्यादा मसालेदार हूँ, मुझ में स्पाइसेस की कोई कमी नहीं है, मैं जो है आपकी लाइफ को चटपटा बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। सो मैं पानी पूरी का बेस्ट जो है ना एक ऑप्शन हो सकती हूँ। एंड व्हाट एल्स, और मैं क्या हो सकती हूँ, और मैं जो है किसी टाइप की चाट हो सकती हूँ, छोले चाट, छोले टिक्की, या फिर मैं छोले भटूरे हो सकती हूँ। थोड़ी सी अनहेल्दी हूँ, ज़्यादा अगर मेरा ओवरडोज हो जाए तो आप बहुत ओवरवेलम हो सकते हो, लेकिन लेकिन लेकिन डिसअपॉइंट बिल्कुल नहीं होगे, मजा आएगा मेरे साथ लाइफ जी कर। आप बताइए अगर आप कोई खाने पीने की चीज होते तो आप क्या होते, 3311063 पर मुझे मैसेज करके। फिलहाल अमेजिंग वाला गाना आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर।
1: मिलता नहीं कदे यार जोर से
0: आए है, बुलिया वे गाने का नाम है।
1: और से नु अज मनाए
0: कोक स्टूडियो भारत का ये गाना है,
1: कमला बुला साईं दा।
0: इसे एंजॉय करके आओ और आपकी कशिश के साथ कहते रहो जियो बिंदास।

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास दोहा बैंक और लुलु लाए हैं शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
1: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलु मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलु शॉपिंग वाउचर।
0: लुलु स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलु पॉइंट्स के फॉर्म में।
1: प्लस एंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माई बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलु पर मिनिमम कतरी रियाल एक स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
0: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026। दोहा बैंक लुलु मास्टरकार्ड प्लैटिनम शॉपिंग नाउ मोर रिवॉर्डिंग। टीएनसी अप्लाई।
2: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ। ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਕਤਰ ਹਿੰਦੀ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਰੇਡੀਓ ਆਲਵ 106.3 FM ਜੀਓ ਬਿੰਦਾਸ।
3: ਆਲਵ ਸੁਨੋ ਰੇਡੀਓ ਨੈਟਵਰਕ, ਕਤਰਸ ਨੰਬਰ 1 ਏਸ਼ੀਅਨ ਰੇਡੀਓ ਨੈਟਵਰਕ।

0: गाना नहीं सुना है पहले, आपको नहीं पता है कि इस गाने में कौन एक्टर है कौन एक्ट्रेस है, आंख बंद करो, ऑटोमेटिकली एक शक्ल आपकी आंखों के सामने आने लग जाएगी एंड आपको फिर जानने की जरूरत नहीं है कि ये गाना जो है ये किसने परफॉर्म किया है। वेलकम जी 106.3 रेडियो आलिफ पर, मैं हूँ आपकी कशिश। एंड जो है एक गानों के ब्रेक पे जाने से पहले हमने ये बात की थी कि ये बताइए कि अगर आप किसी टाइप का खाना होते तो आप कौन सा खाना होते, यानी कौन सी डिश होते। एंड बहुत सारे लोगों का अजीब अजीब मैसेज आया यार, और मैक्सिमम लोगों ने सिर्फ एक ही चीज़ कही है कि हम तो बिरयानी होते, कम्फर्ट फूड बिरयानी है तो हम तो बिरयानी होते। यार बिरयानी आई नो बहुत अच्छी डिश है एंड सबको बहुत पसंद है, लेकिन बिरयानी हर बात पे बिरयानी, कुछ खाने को नहीं समझ आते तो बिरयानी, मतलब कुछ पार्टी है बिरयानी, ठीक है कहीं कुछ ऑर्डर करना है बिरयानी, बाहर जाके खाना है बिरयानी, मूड अच्छा नहीं है बिरयानी खा लेते हैं, मूड बहुत अच्छा है बिरयानी खा लेते हैं, बिरयानी बिरयानी बिरयानी बिरयानी को यार बिरयानी रहने दो ना, बिरयानी को खिचड़ी क्यों बना रहे हो। मेरी मम्मी का क्या है, जब पापा जो है वो घर पे खाना नहीं खाने वाले होते थे ना, सो अगर सिर्फ मुझे और मम्मी को कुछ खाना होता तो मम्मी हमेशा खिचड़ी बना देती थी। एंड मैं यहाँ पर इतना मिस कर रही हूँ ना उस खिचड़ी को कि मैं क्या बताऊँ। मैंने बनाने की कोशिश करी लेकिन वो बन नहीं पाई वैसी। अगर आपके पास खिचड़ी की कोई अच्छी रेसिपी है तो प्लीज वो मुझे बता देना 3311063 पर। फिलहाल लोगों ने ये भी कहा है कि यार मैं तो दाल चावल हूँ, लोग मुझे सीरियसली नहीं लेते, लेकिन जब मैं उनकी लाइफ से चला जाता हूँ तो उन्हें जो है मेरी काफी कमी महसूस होती है। आई कैन रिलेट विथ यू ब्रो। इंस्टाग्राम के इस ट्रेंड के बारे में आपका क्या कहना है ये आप मुझे बता सकते हैं 3311063 पर आकर, इंस्टाग्राम पर आकर रेडियो ऑलिव के पेज को फॉलो भी कर सकते हैं, वहां भी हम काफी सारी ट्रेंडिंग चीजें जो है वो करते रहते हैं। सो स्टे ट्यून्ड रहो, और फिलहाल ये कूल सॉन्ग ऑफ द आवर एंजॉय करो।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है।
0: आदिब असलम की आवाज में जिंदगी आ रहा हूँ मैं। अगर इस गाने का वीडियो नहीं देखा है आपने तो देखिएगा, इसमें टाइगर श्रॉफ है एंड थोड़ा अलग सा व्यू है, पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन टाइगर श्रॉफ ने अपना बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है इसमें। एंजॉय करो, मुलाकात होगी थोड़ी सी देर में, स्टे ट्यून्ड रहो और कहते रहो जियो विद दास।

0: presents CB 2026 million reals dream.
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 million reals cash prizes.
0: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 reals ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और mega draw ticket.
2: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.

कल है तो मेरे दोस्त जस्ट चिल। मैंने प्यार क्यों किया मूवी से जस्ट चिल गाना आपने एंजॉय किया 106.3 रेडियो अलिफ पर। एंड देखिए जब गूगल है जेमिनी है एआई है तो फिर क्यों टेंशन लेना है, जस्ट चिल। सो लाइफ मस्त शो मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ। एंड लाइफ मस्त तो तब हो जाती है जब आप एक फॉरेन कंट्री में होते हो एंड वहाँ पे आपको लैंग्वेज नहीं आती है लेकिन कुछ ऐसा टूल आपके पास होता है जिससे आप बातचीत कर सकते हो। मैं तो देखो इशारों का सहारा लेती हूँ, मैं इशारे में बता देती हूँ कि मुझे चाय चाहिए, मुझे कड़क चाहिए या मुझे क्या चाहिए या मुझे क्या नहीं मिल रहा है। मैं फ़ोन पर फोटो दिखा देती हूँ सुपरमार्केट पे। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे नहीं करना पड़ेगा, अब मैं प्रॉपर बातचीत जो है वो कर सकती हूँ अगर मुझे लैंग्वेज नहीं आती है तो भी। सो गूगल ने जो है लॉन्च कर दिया है रियल टाइम एआई स्पीच ट्रांसलेशन इन 70+ लैंग्वेजेस, यानी अब 70 से ज्यादा लैंग्वेजेस को आप रियल टाइम में यानी सामने वाले से बात करते करते जो है आप ट्रांसलेट कर पाओगे एंड उसे जवाब भी दे पाओगे। मेरे इतने सारे दोस्त हैं मैं उन्हें जोक ही नहीं समझा पाती कई बार, क्योंकि जोक जो है वो लैंग्वेज में जब तक मैं ट्रांसलेट करने जाऊंगी तब तक उसका मतलब खत्म हो जाएगा, और जो जोक समझाना पड़े वो जोक जोक कैसे है। बस इसीलिए मुझे लगता है कि ये वाला जो टूल है ये बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। एंड 3.5 लाइव ट्रांसलेट विथ रियल टाइम स्पीच ट्रांसलेशन, सो आप बस कुछ भी कहिए एंड उस टाइम पे आपका जो जेमिनी है वो आपको ट्रांसलेट करके बता देगा कि ये उस दूसरी भाषा में कैसे कहा जाता है। एंड मुझे लगता है ये बहुत ही यूजफुल टूल होने वाला है अगर आप किसी फॉरेन कंट्री में जा रहे हो या फॉरेन कंट्री में आए हुए हो। सो अगर आपको अरबिक नहीं आती है आपको या कोई और भाषा नहीं आती है आपके लिए बहुत आसान होने वाला है। ओरे नैना गाने का नाम है ये, हिंदी में ये समझ आ जाएगा आपको। इसे एंजॉय करो, गोरी तेरे प्यार में मूवी का ये ट्रैक है और आपकी कशिश आपकी इस गोरी के साथ बने रहिए 106.3 रेडियो ओलिव पर, और याद से कहते रहिए जियो बिंदास।

0: नमस्कार, मैं हूँ गुलराज सिंह।
1: गुलराज सिंह
0: और आप सुन रहे हैं रेडियो ऑलिव 106.3।
1: जियो बिंदास।
2: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।

0: इतनी सी बात, इतनी सी बात पे इतना कौन गुस्सा होता है यार। मम्मी कॉल करके कल मम्मी को बोल दिया कि मम्मी मैगी खा रही हूँ, डिनर बनाने का मन नहीं है। मम्मी ने गुस्सा करना शुरू कर दिया कि तुम मैगी क्यों खा रही हो, अच्छा नहीं होता है, वहां पे पता नहीं क्या क्या खा रही हो। अरे इतनी सी तो बात थी मम्मी, सिर्फ मैगी ही तो खा रही थी। मैं कल जो है 11:30 बजे सोकर उठी, मतलब 11:30 पे, तो मम्मी ने तब बोल दिया कि 11:30 तक क्यों सो रही हो। मतलब मम्मी जो है उनका फूड जो है मुझे ऐसा लगता है डाइजेस्ट नहीं होता जब तक वो मुझे डांटती नहीं है, तो इसीलिए मैं इंडिया में नहीं हूँ। फिर भी वो मुझे रीजन ढूंढती है डांटने के। पर देखो मम्मी, हर बार सच बोलती हूँ मैं आपसे, मुझे पता है आप मुझे डांटने वाले हो। मैं चाहूँ तो झूठ बोल सकती हूँ कि मैं जो है सुबह से उठ गई थी, कि मैंने तो जो है आज छोले भटूरे बना के खाए हैं मम्मी, लेकिन यू नो सच बोलती हूँ मैं। वेलकम टू यू 106.3 रेडियो ऑल ऑफ पर, मैं हूँ आपकी कशिश और शो आपके लिए लाइफ मस्त लेकर आ गई हूँ। एंड एक बात जो मैंने मम्मी को ये नहीं बताई कि कल मैंने एक मूवी देखी। हाँ, कल मैंने अपने जो है OTT पर एक मूवी देखी, एंड वो मूवी थोड़ी हटकर है, थोड़ी अलग सी है। मूवी का नाम पगलेट है, सानिया मल्होत्रा जो है वो लीड रोल में है। एंड ये जो मूवी है ये पूरी एक नेगेटिव यू नो सिनेरियो पर रिवॉल्व करती है, लेकिन आपको एंड होते होते मूवी एक फील गुड फैक्टर दे देगी। आपको लास्ट तक लगता रहेगा कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा। बहुत लाइट मूवी है, ऐसा लगेगा कि हाँ ठीक है अभी शुरू हुई थी अभी ख़त्म हो गई, लेकिन बहुत ही कुछ ऐसी चीज़ों को हाईलाइट कर रही है ये मूवी जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि एक इंसान की डेथ के बाद जो है क्या कुछ होता है घर में, किस किस सिचुएशन से फैमिली जो है वो गो थ्रू करती है, इन सब बारे में जो है ये मूवी बात करती है। सो पगलेट मूवी मैं हाईली रिकमेंड करूंगी आपको, नेटफ्लिक्स पे आपको देखने को मिल जाएगी, आप वहां जाकर देख सकते हो। एंड आपको कैसी लगी ये मूवी 3311063 पर आकर आप मुझे बता सकते हैं। अगर मुझसे आप ये पूछें कि कशिश इस मूवी को कितना रेट करना चाहोगी, सो आउट ऑफ 5 सॉलिड 3 या 3.5 मैं इसे देना चाहूंगी, क्योंकि मूवी बहुत ही चिल है, चिल नोट पे चलती रहती है, ऐसे कुछ बहुत ही हैवी नहीं है आप पर, लेकिन एक बहुत मेजर टॉपिक पे जो है ये बात करती है। सो 3311063 पर आपकी अगर कोई मूवी रिकमेंडेशन है जो आप मुझे देना चाहते हैं कि कशिश यार ये मूवी एक बार देखो एक बार ट्राई करो, सो वो मैं देखने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, मुझे आप बता सकते हैं 3311063 पे। ऐसे ही मूवी रिकमेंडेशन जो है मैं आपके लिए लेकर आऊंगी, सीरीज के रिकमेंडेशन मैं आपके लिए लेकर आती रहूंगी, लेकिन अभी फिलहाल अमेजिंग वाला गाना ऑल ऑफ फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आवर
1: Radio Olive Park. Fresh, fresh, fresh, fresh, fresh. Ye gana fresh. Fresh song of the hour. Ye gana.
0: टोनी कक्कर का गाना पति पत्नी और वो दो से धीमे धीमे 2.0। इस गाने को एंजॉय करते रहिए और आपकी कशिश के साथ कहते रहिए जियो बिंदास।

0: listening to Radio Olive 106.3 FM. दोहा बैंक और लुलु लाए है शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
1: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलु मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलु शॉपिंग वाउचर।
0: लुलु स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलु पॉइंट्स के फॉर्म में।
1: प्लस एंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माई बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलु पर मिनिमम कतरी रियाल 1 स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
0: ऑफर वैलिड टिल 30 June 2026। दोहा बैंक लुलु Mastercard Platinum. Shopping now more rewarding. TNC apply.

कल से मेरे इंस्टाग्राम पे और हर जगह, चाहे यूट्यूब हो फेसबुक हो, एक ही टाइप का कंटेंट आ रहा है, और वो कंटेंट है कि किस तरीके से 2022 में कतर ने फीफा जो है वो होस्ट किया था। तो इस बार इतना हाई सेट हो चुका है कि कोई कंट्री कैसे ही इससे बेहतर कर सकती है। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑल पर, मैं हूँ आपकी कशिश, जो आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई हूँ। एंड अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग बात तो ये है कि मैं जो है तब कतर में नहीं थी जब फीफा होस्ट किया गया था, लेकिन लोगों की स्टोरीज जो है मैं थ्रोबैक्स देख रही हूँ एंड मुझे इतना मज़ा आ रहा है, इतना अच्छी वाइब आ रही है ना, इतना फोमो फील हो रहा है कि यार तब क्यों नहीं आई। लेकिन तब जो है मैं कॉलेज में पढ़ रही थी आने का कोई सीन ही नहीं था। सो फीफा वर्ल्ड कप 2026 जो है वो स्टार्ट हो चुका है एंड शुरुआती मैचेस में ही जो है एक बूम देखने को मिला। यहाँ टूर्नामेंट की हिस्ट्री में सबसे बड़ा ये जो वर्ल्ड कप है ये हो रहा है, जहाँ 48 टीम्स जो है वो हिस्सा ले रही हैं एंड 3 कंट्रीज जो है वो मिलकर होस्ट बनी हुई है, यूएसए, कनाडा एंड मेक्सिको। सो कल के अगर हम मैचेस की बात करें, सो यूएसए ने जो है 4 पॉइंट्स के साथ जो है वो लीड ले ली। मेक्सिको का मैच था, उसमें 2-0 से जो है साउथ अफ्रीका को हरा दिया मेक्सिको ने, एंड कनाडा ने जो है वो 1-1 से मैच टाई कर दिया। सो अगर आज के मैं मैच की बात करूँ, सो वो काफ़ी स्पेशल होने वाला है बिकॉज कतर का मैच है आज। हाँ जी, कतर जो है वो ग्रुप बी में है और उसके मैचेस जो है लोकल दोहा टाइमिंग के हिसाब से अगर हम देखें तो स्विट्जरलैंड के साथ आज रात को 10 बजे देखने को मिलेंगे। सो एक्साइटेड है या नहीं है कतर का मैच देखने के लिए? मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ एंड बहुत सारी अलग अलग जगहों पे स्क्रीनिंग भी चल रही है। सो आप कहाँ जा रहे हैं देखने के लिए जरूर बताइएगा मुझे। खैर, थोड़ी सी देर में अमेजिंग वाले गानों के साथ साथ अमेजिंग खबरें जो है वो भी मैं आपके लिए लाने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून्ड रहो और कहते रहो जियो विद दास।

0: सारी दुनिया ये बोलती है बोले चूड़ियां, लेकिन कंगना के लिए बोला जाता है बोले चूड़ियां ना बोले कंगना। वेलकम जी 106.3 रेडियो और फिर मैं हूँ आपकी कशिश और शो आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई हूँ। एंड देखिए यार, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज अक्सर आए दिन कुछ ना कुछ ऐसा बोल देते हैं जो कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाता है। और अगर इसमें मैं एक लिस्ट बनाऊं तो सबसे ऊपर बॉलीवुड एक्ट्रेसेस में कंगना रनौत का नाम आता है। ये जब बोलती हैं तो लोगों को ऐसा लगता है कि अब तो कोई ना कोई कलेश जरूर होने वाला है। कंगना को बिल्कुल हमने बॉलीवुड की बुआ बना दिया है कि ये जब आएगी, जब कुछ बोलेगी तो बुरा ही बोली। लेकिन ऐसा नहीं है, बुआ जो है अच्छी भी होती है। एंड इसका प्रमाण, इसका जो एक एग्जाम्पल है वो सेट किया है कंगना रनौत ने। अभी एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने दीपिका पादुकोण की तारीफ कर दी और उन्हें पूरा क्रेडिट दिया कि कुछ ऐसी बहुत अच्छी चीजें हैं जो मैंने दीपिका पादुकोण से सीखी है। आहा, और इस बात से हमें सीखना चाहिए कि देखो ये बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज भी एक दूसरे को क्रेडिट दे रहे हैं और हमारे यहाँ पर अच्छी चाय अगर बन गई तो क्रेडिट हम ले लेते हैं, अगर शक्कर वक्कर या चाय पत्ती कम ज्यादा हो गई तो बोल देते हैं फटाक से वो तो इसको डालने बोला था। मेरे साथ तो देखो अक्सर यही होता है। अमेजिंग वाले गाने आ रहे हैं आपके रेडियो सेट्स पर, सो इन्हें एंजॉय करके आओ। आके जरा आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सा बताना है, सो स्टे ट्यून्ड रहो और कहते रहो जियो बिंदास। कूल
1: सॉन्ग रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है कूल सॉन्ग।
3: The last ride.

इंडिया एक ऐसी जगह है जहां पर अगर आपको थोड़ा सा अकेले टाइम चाहिए हो आपको तो भी नहीं मिल पाए. मतलब अगर आप चाहो कि कैब में बैठकर मैं थोड़ी सी शांति में खुद से बातें कर लेता हूं तो नहीं, कैब वाले भैया आपसे बात करेंगे, ऑटो वाले भैया आपसे बात करेंगे. अगर आप घर पे चाहेंगे कि मैं अकेले रहूं थोड़ा पीसफुल टाइम स्पेंड कर लूं तो आपको पड़ोस वाली आंटी जो है चिल्ला के पूछ लेंगे आज क्या हो रहा है. ये तो हाल इंडिया का, ये रिसर्च करने वाले कुछ भी कहते हैं. वेलकम बैक 106.3 रेडियो ऑल पर, मैं हूँ आपकी कशुशन, शो आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई हूँ. एंड अभी एक रिसर्च जो है मैंने इंस्टाग्राम पे पढ़ी, एंड इंस्टाग्राम की रिसर्च पे तो वैसे ही भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन मैंने पढ़ी तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों से एक बार डिस्कस कर लिया जाए. सो उस रिसर्च में ये लिखा है कि इंडिया की सेकेंड सबसे लोनली कंट्री, यानी सबसे अकेलापन जिस कंट्री में है वो इंडिया है. हो ही नहीं सकता, हमें अकेला टाइम चाहिए हो इंडिया में तो नहीं मिलता. खैर मैं तो देखो कतर इसीलिए आई थी क्योंकि मुझे थोड़ा सा मी टाइम चाहिए था. अब मैं यहाँ पे फुल ऑन मी टाइम स्पेंड कर रही हूँ. जब मुझे लोग चाहिए होते हैं मुझे लोग मिल जाते हैं, जब मुझे पीस चाहिए होती है मुझे पीस मिल जाती है. कुछ नहीं तो बस कॉर्निश पे जाके बैठ जाती हूँ, बहुत मजा आता है. किसी को कोई मतलब नहीं है, कोई जो है फालतू मुझसे सवाल जवाब नहीं कर रहा है, मुझे तो यहाँ बहुत मजा आ रहा है. लेकिन इंडिया में जो है लोनलीनेस जैसी चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है. पता नहीं रिसर्च करने वाले क्या कहते हैं, आपको क्या लगता है ऐसा है या नहीं है? 3311063 पर आकर मैसेज कर दो. फिलहाल अमेजिंग वाले गाने इंतजार कर रहे हैं आपके रेडियो सेट्स पर. आपको देखो लोनलीनेस बिल्कुल फील नहीं होगी इन गानों के चलते और मेरे रहते. सो मेरे साथ जो है ये अमेजिंग गाने इंजॉय करते रहो और कहते रहो जियो बिंदास.

जी संधू की आवाज में ये अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग गाना आपने इंजॉय किया 106.3 रेडियो ऑल और शो मेरे साथ अब लाइफ मस्त है एंजॉय कर रहे थे और थे मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अब वक्त हो गया है मेरे यहाँ से जाने का। अब देखिए वीकेंड खत्म होने के बाद आपने थोड़ा सा एनर्जाइज तो मुझे कर दिया है कि अब मैं पूरा हफ्ता अच्छी तरीके से गुजार सकती हूँ आप लोगों के साथ फन करते हुए मस्ती करते हुए एंड लाइफ को और ज्यादा मस्त बनाते हुए। लेकिन फिर भी जो थोड़ी बहुत कसर बच गई है वो आज सैटरडे को पूरी करनी तो बनती है ना। तो आपके क्या प्लान्स है इस सैटरडे के 3311063 पर जो है अगर आप हमें बता सकते हैं। फिलहाल तो बैक टू बैक गाने आपको सुनने को मिलेंगे लेकिन उसके बाद तनीषा सिमरन सब आपकी लाइफ को और ज्यादा मस्त बनाएंगे। सो स्टे ट्यून्ड रहिए रेडियो ऑलिव पर और मैं वही कहूंगी जो मैं हर रोज कहती हूँ कि अपना ख्याल रखिए, गाड़ी धीरे धीरे हौले हौले चलाइए, मुझे जो है याद करते रहिए, पानी पीते रहिए, सनस्क्रीन लगाते रहिए एंड अमेजिंग वाले गाने अमेजिंग तरीके से इंजॉय करते रहिए। और हाँ याद रखना कि कहना है जियो बिंदास। विशाल मिश्रा की आवाज में ट्रैक जो है इसे एंजॉय कीजिए। अब मुलाकात होगी कल। स्टे ट्यून रहिए जियो बिंदास।

0: Qatar's number one radio station. Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindaas. दोहा बैंक और लुलु लाए हैं शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
1: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलु मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलु शॉपिंग वाउचर।
0: लुलु स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलु पॉइंट्स के फॉर्म में।
1: प्लस एंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माय बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलु पर मिनिमम कतरी रियाल एक स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
0: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026। दोहा बैंक लुलु Mastercard Platinum. Shopping now more rewarding. TNC apply.

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। दोहा बैंक और लुलू लाए है शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
1: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलू शॉपिंग वाउचर।
0: लुलू स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलू पॉइंट्स के फॉर्म में।
1: प्लस इंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माई बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफ स्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलू पर मिनिमम कतरी रियाल 1 स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
0: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026। दोहा बैंक Lulu Mastercard Platinum. Shopping now more rewarding. TNC apply.
2: Olive Music Marathon. Ek ghanta. Ek ghanta. Non-stop back to back gaane. Back gaane.

0: अलीसा फर्की आवाज में बहुत ही सुंदर रेंडिशन ऑफ मुझे तुम नजर से, कितना सुंदर है यार ये गाना, बहुत ही प्यारा। यू आर लिसनिंग टू रेडियो 106.3 एफएम, तनीषा आगे जी आपके साथ ऑलिवरी चार्ज लेकर अ वेरी गुड आफ्टरनून मेरी जान।
1: झूठा जो सांझ ख्वाब देखते थे नैना।
0: ब्यूटीफुल ट्रैक इन द वॉइस ऑफ अरिजीत सिंह। और अली सफर की आवाज में एक और खूबसूरत गाना आने वाला है, साथ में राहत साहब भी इंतजार कर रहे हैं और साथ में पू भी बैठी है भाई।
2: दीवाना है देखो बेकरार वो, संभालो संभालो ना प्यार हो।
0: All these amazing tracks are lined up for you in this hour. लेकिन सबसे पहले जानेंगे आपके हालचाल। 3311063 पर मैसेज कीजिए और बताइए कैसे हैं, क्या हालचाल है, वीकेंड कैसा रहा, अपने साथ वक्त बिताया या नहीं, बताओ जरा, मैसेज करो फटाफट से 3311063 पर। And stay tuned to Radio Olive, Jio, Bindas, मेरी जान।

0: are listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडू ऐप पर. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू.
2: हेलो लिसनर्स, मेरा नाम है राजपाल यादव और आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव

0: You're listening to Radio 106.3 FM, Tanisha आपके साथ ऑल रिचार्ज चल रहा है यहाँ पर. और एक बात बोलना चाहती हूँ, जरा गौर से सुनिएगा मेरी जान. लाइफ कितनी भी मोए मोए क्यों ना चल रही हो, पर्सनालिटी हमेशा ओए होए ही रहनी चाहिए. इतना स्ट्रेस नहीं लेना है यार, लाइफ है, अप्स एंड डाउन्स तो आएंगे ही. अब हम हर चीज को पकड़ कर बैठ जाएंगे ऐसे तो जिंदगी कब जिएंगे, वक्त गुजर जाएगा. सो डोंट डू दैट टू योर सेल्फ. जो वक्त है अभी उसे खुल के बिंदास तरीके से जीने का मेरी जान, समझ रहे बात को. और हम भी तो यही कहते रहते हैं, जियो बिंदास.
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर.
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है.
3: Cool song.

0: सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम। दोहा बैंक और लुलु लाए हैं शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
1: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलु मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलु शॉपिंग वाउचर।
0: लुलु स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलु पॉइंट्स के फॉर्म में।
1: प्लस इंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माय बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलु पर मिनिमम कतरी रियाल 1 स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
0: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026। दोहा बैंक लुलु MasterCard Platinum. Shopping now more rewarding. TNC apply.
2: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
3: लगा और हो जा रिचार्ज।
4: ऑलिव रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास।
3: ऑलिव रिचार्ज।
5: This hour is brought to you by
6: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहाँ मिलती है complete transparency और भरोसा.
7: In association with
8: Doha Bank,
7: make shopping more rewarding. Get a 500 Qatri Riyal Lulu voucher with your new Doha Bank Lulu Mastercard Platinum Credit Card. Just spend 1 Qatri Riyal to unlock up to 5% rewards. Apply before June 30th. TNC apply.

0: fresh fish on the grill, slow-cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama. Just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience. Serve with pride. Danat Al Bahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif Al Khor.
1: The big. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Yes, Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry. Offer valid until 13th June 2026 only. Hurry!
2: Joyalukkas, world's favorite jeweler.
3: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए.
4: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ.
3: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
4: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की.
3: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो. आज ही शुरू करो सेविंग्स. कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन.
5: ऑनली लगा और हो जा रिचार्ज. ऑनली रिचार्ज.
6: ऑलिव रिचार्ज. रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर. जियो बिंदास.
5: ऑनली रिचार्ज.
7: This hour is brought to you by
0: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds ki har jewelry piece ethically sourced hoti hai aur aati hai Malabar Promise ke saath, jahan milti hai complete transparency aur bharosa.
8: In association with
9: Doha Bank,
8: make shopping more rewarding. Get a 500 Qatri Riyal Lulu voucher with your new Doha Bank Lulu Mastercard Platinum Credit Card. Just spend 1 Qatri Riyal to unlock up to 5% rewards. Apply before June 30th. TNC applies.

beautiful track in the voice of Kamal Khan from the movie Kismat only on Radio 106.3 FM. Tanisha, aapke saath all recharge chal rahe hain yahan par. Aur FIFA ka jo opening ceremony hua tha, usme Shakira ne perform kiya, par log manne ko hi tayyar nahi hai ki wo Shakira nahi hai, Shakira hi hai. Confused तो मैं भी हो गई हूँ. So everybody on the internet right now is speculating कि कोई तो body double था, it was not original Shakira जिसने वहाँ perform किया. वो इसलिए क्योंकि उनके forehead पे एक mark था जो कि वहाँ live videos में नज़र नहीं आ रहा लोगों को. एक mark से उन्होंने पहचान लिया कि वो Shakira नहीं है. बाकी इसके ऊपर कोई confirmation नहीं है, आया है कि you know whether it was Shakira or not. बट या स्पेकुलेशंस चल रहे हैं. आपको क्या लगता है अगर आपने देखा है? ऑब्वियसली यार फीफा के तो बहुत फैंस हैं कतर में, फॉलो कर रहे होंगे. साथ ही एक और चीज़ बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है इंस्टाग्राम पर, यू नो सोशल मीडिया पर राइट नाउ, वो है जो कतर में हुआ था फीफा वर्ल्ड कप. यस, पीपल कैन नॉट स्टॉप टॉकिंग अबाउट इट कि वो कितना अमेजिंग, कितना वेल ऑर्गेनाइज और कितना इंक्लूसिव था. एंड बात तो एकदम सही है, इसमें तो कोई दोहरा है ही नहीं, है ना? आपकी कोई मेमोरी है तो जरा शेयर कीजिए 3311 1063 पर एंड स्टे ट्यून्ड टू रेडियो ऑलिव.

0: Qatar's number one radio station. Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindaas. Doha Bank और Lulu लाए हैं शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
1: अब अप्लाई कीजिए Doha Bank Lulu Mastercard Platinum Credit Card के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 Lulu शॉपिंग वाउचर।
0: Lulu स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स Lulu पॉइंट्स के फॉर्म में।
1: प्लस एंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माय बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए Lulu पर मिनिमम कतरी रियाल एक स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
0: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026। Doha Bank Lulu Mastercard Platinum. Shopping now more rewarding. TNC apply.

0: दोहा बैंक और लुलु लाए है शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
1: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलु मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलु शॉपिंग वाउचर।
0: लुलु स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलु पॉइंट्स के फॉर्म में।
1: प्लस एंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माई बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलु पर मिनिमम कतरी रियाल 1 स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
0: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026। दोहा बैंक लुलु मास्टर कार्ड प्लैटिनम, शॉपिंग नाउ मोर रिवॉर्डिंग। TNC अप्लाई।
2: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
3: Hi, Radio Olive 106.3 listeners. This is Shah Rukh Khan.
4: Hi, this is Ajay Devgan.
5: Hi, this is Akshay Kumar.
6: Hi, this is Anushka Sharma.
7: And I'm Ashwin Varsi.
8: This is Ranveer Singh. Stay tuned.

0: Tanisha.
1: You're listening to Radio Olive 106.3 FM. Tanisha, आपके साथ Olive Recharge चल रहा है यहाँ पर और Doha Bank and Lulu has brought something really amazing for you. अब आपका shopping experience जो है और भी ज्यादा rewarding हो जाएगा. जी, all you have to do is apply for Doha Bank Lulu Mastercard Platinum Credit Card and you can get 500 रियाल तक के Lulu shopping vouchers. Not just that, Lulu stores पर जब भी आप spend करेंगे तो आपको 5% savings भी मिलेंगी Lulu points के form में. और साथ ही you can enjoy airport lounge access, my book offers, dining deals और बहुत सारे lifestyle privileges भी. तो देर किस बात की है, तो जल्दी से जाइए, apply कीजिए, get your card activated and Lulu पर minimum 1 रियाल spend करो बस और फिर rewards का फायदा उठाओ. This offer is valid till 30th June only. तो जल्दी जाइए और अप्लाई कीजिए फॉर Doha Bank Lulu Mastercard Platinum Card and stay tuned to Radio Olive. Jio Bindas.
0: अब सुनिए Olive का जबरदस्त है. जबरदस्त

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास।
1: Fresh on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama. Just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience, served with pride. Danatal Pahar, the ultimate Katri adventure. Souk Waqif Alkhol.
2: Only laga aur ho ja recharge.
3: Olive recharge.
0: Olive recharge. रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास।
4: दिस आवर इज ब्रॉट टू यू बाय
1: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स, द रिस्पांसिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा
5: इन एसोसिएशन विद
6: दोहा बैंक।
5: मेक शॉपिंग मोर रिवॉर्डिंग। गेट अ 500 कतरी रियाल लुलु वाउचर विद योर न्यू दोहा बैंक लुलु मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड। जस्ट स्पेंड 1 कतरी रियाल टू अनलॉक अप टू 5% रिवॉर्ड्स। अप्लाई बिफोर जून 30th। TNC अप्लाई।

0: आज बहुत काम है।
1: मेरी भी तो सुनो।
0: दूर हुआ तो क्या, दिल में तुम्हारा नाम है।
1: वाओ।
0: जिस चेहरे पर मरते हैं वो बोरिंग हो जाए।
1: I'm not listening to
0: you। कुछ ही दिन में नजरें इनकी इधर उधर मंडी।
1: I'm not listening
0: to you। सिर्फ प्यार से जिंदगी नहीं चलती।
1: Okay, I'm not with
0: her। इंटीरियर डेकोरेशन का कोर्स क्यों नहीं करती?
2: Okay, that's it। Tanisha।
3: Tanisha। You're listening to Radio Olive 106.3 FM. Tanisha aapke saath Olive Recharge chal raha hai yahan par. And this Thursday, I went to watch Main Wapas Aaunga. And I cannot wait to talk about that movie. Matlab jab se dekhi tab se mujhe tha ki aapse share karni hai. Agar aapne dekhi hai, to I think you would be able to relate with the emotions. I mean, it is, about longing. It is about कुछ अधूरा रह गया है और वो जब तक वो चीज़ पूरी नहीं होती है हम बाकी चीज़ों में ध्यान नहीं दे पाते हैं या फिर वी कैन नॉट फिनिश ऑफ एनी अदर थिंग अगर एक चीज़ वो एक चीज़ जो आपको बहुत मायने रखती है वो इनकम्प्लीट रह जाए. इट इज़ अबाउट दैट. एंड नसरुद्दीन शाह साहब ने जो काम किया है, अमेजिंग स्प्लेंडेड परफॉर्मेंस. और वेदांग और शर्वरी भी बहुत कमाल थे और दिलजीत की तो मैं क्या ही बात करूँ. And if you will go to watch that movie in theaters, so please end credits ke baad zarur rukiyega. Bahut badhiya surprise hai. Jo Diljit ka song hai, kya kamal hai. Uska ek extended version hai aur uska video bahut beautiful hai. Wo must watch hai. So I would suggest ki agar nahi dekhi hai to jaiye theater, dekh aaiye. Banta hai yaar, bahut sundar hai. Aur Imtiaz Ali ki movies ka jo flavor hota hai na, wo alag hi hota hai. So wo starting se dekhte hi aapko samajh jayega ki oh, this is Imtiaz Ali core film. So you should watch it and stay tuned to Radio Olive. See you.

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. दोहा बैंक और लुलू लाए है शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस.
1: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलू शॉपिंग वाउचर.
0: लुलू स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलू पॉइंट्स के फॉर्म में.
1: प्लस एंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माई बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफ स्टाइल प्रिविलेजेस. बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलू पर मिनिमम कतरी रियाल एक स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए.
0: ऑफर वैलिड टिल 30 June 2026. दोहा बैंक लुलू मास्टरकार्ड प्लैटिनम शॉपिंग नाउ मोर रिवॉर्डिंग. TNC अप्लाई.
2: ऑलिव लगा और हो जा रिचार्ज. ऑलिव रिचार्ज.
3: ऑलिव रिचार्ज. रेडियो ऑलिव 106.3 FM पर जियो बिंदास.
2: ऑलिव रिचार्ज.
4: This hour is brought to you by
5: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहाँ मिलती है complete transparency और भरोसा.
6: In association with
7: Doha Bank,
6: make shopping more rewarding. Get a 500 Qatri Riyal Lulu voucher with your new Doha Bank Lulu Mastercard Platinum Credit Card. Just spend 1 Qatri Riyal to unlock up to 5% rewards. Apply before June 30th. TNC apply.
3: Radio Olive

0: fine, all right. Thank you.
1: इस तारीफ के मिला के पूरे अब आपको मुझे 50,000 रियाल देने हैं।
0: जी जी जी
1: पेंडिंग हो रखे हैं।
0: कीप ड्रीमिंग
1: ठीक है
0: क्या
1: कीप
0: ड्रीमिंग
1: अच्छा ड्रीमिंग
0: बाय द वे मार्केट में एक नई चीज आई है तू तो परफ्यूम का बहुत शौकीन है
1: जी जी
0: चाय परफ्यूम आ गया है
1: पसंद ही नहीं है ना चाय तो फर्क नहीं पड़ता मुझे
0: पर चाय परफ्यूम की क्या जरूरत है मतलब आई लव चाय यू नो दैट मैं अगर हम कहीं किसी इवेंट से या फिर कहीं से भी आधी रात को भी आ रहे हैं ना तो मुझे चाय पीनी है So that's the case with me. लेकिन ये चाय परफ्यूम I'm not
1: चाय जब बनती है मतलब गरम गरम गर्मा गर्म जब बनती है तो जो खुशबू आती है
0: I understood that Sudev
1: तो वो फीलिंग बहुत पसंद है लोगों को
0: But why would somebody want to smell that on a person? वो चाय की खुशबू है ना वो चाय के साथ आएगी
1: बहुत लोग के अलग अलग वो थॉट प्रोसेस रहते हैं ना है ना
0: बीच में आई हर्ड कि ऐसे चिकन टिक्का वाला फ्रेग्रेंस भी आया था व्हाट इज रॉन्ग विद पीपल
1: मुझे लगता है आजकल लोग जो हैं स्मेल से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे तो सोच रहे कि भाई खाने से लोग बहुत वो जाते हैं तो इसी खाने का स्मेल अगर हम
0: कम ऑन यार दैट इज सो नॉट ओके कोई इंसान अगर कुछ प्याज वाला खा कर आए और उनके मुंह से वो प्याज की स्मेल आ रही हो तब लोगों का इतना बुरा टर्न ऑफ हो जाता है ये सब कैसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है आई डोंट अंडरस्टैंड
1: ये सब आ कहां से रहा है वैसे कौन से एरिया से आ रहा है रीजन से आ रहा है ये
0: चाय परफ्यूम इज फ्रॉम इंडिया And this chicken wala I think was from US or somewhere.
1: अच्छा. देखो मैं surprise नहीं हूँ बिल्कुल भी क्योंकि जितने भी लोगों से मैं मिला हूँ इंडिया में सब चाय के शौकीन हैं.
0: I get it but I don't know I'm not able to fathom with the fact कि चाय perfume कोई लगा के चल सकता है.
1: इतनी बढ़िया भारी बात कर रही fathom with the fact. भाई तीन मिनट के लिए मुझे लगता है ये सुन के आधी जनता ने डिक्शनरी निकाल ली बाहर की ये क्या बोल दिया ये क्या बोल दिया यहाँ पे ये क्या हो गया करके गाड़ियाँ रुक गई बीच में ट्रैफिक में आप ऐसे मत बोला करो
0: बट यार आई डेफिनेटली वांट दैट मिट्टी की खुशबू वाला वो जो बारिश होती है पेट्रिकोर
1: पेट्रिकोर
0: दैट फ्रेग्रेंस वाला परफ्यूम एंड आई फाउंड दैट वन मैं जब इंडिया जाऊंगी आई एम गोना बाय दैट
1: मैं भी
0: अच्छा
1: मैं यहाँ से दो तीन देख के रखे
0: क्या
1: दो तीन मिनट देख के रखे वहां जाके लेने के लिए
0: ओके ओके मुझे लगा लेके रखे और मुझे नहीं पता
1: नहीं वो तो अभी लेंगे ना अभी जाके लेंगे
0: अच्छा अच्छा आप गाना सुनिए हम आते हैं लौट कर स्टे ट्यून्ड एट जियो विद अस
1: मेरी जान

0: Tanisha.
1: You're listening to Radio All Over 106.3 FM. Tanisha आपके साथ और साथ में सुदेव ऑलरेडी रिचार्ज चल रहा है यहाँ पर.
2: Yes, यहाँ पर रिचार्ज होने के लिए हम आ चुके हैं. वैसे आपका फोन टाइप सी चार्जर है, लाइटनिंग चार्जर है या फिर
1: टाइप सी
2: है? इस सवाल का कोई मतलब नहीं था मेरा मन क्या पूछने के. जस्ट लाइक योर लेम जैम्स.
1: राइट नाउ आई एम नॉट डूइंग लेम जैम्स.
2: अच्छा ठीक है.
1: अभी थोड़ी देर पहले हमने फ्रेग्रेंसेस की बात की. यू रिमेम्बर दे यूज्ड टू बी दोज मॉस्किटो कॉइल्स, है ना?
2: जी.
1: सो पेरिस के एक लग्जरी ब्रांड ने फ्रेग्रेंस वाली मॉस्किटो कॉइल्स लेकर आए हैं.
2: ओके.
1: एंड दे आर सेलिंग इट फॉर 6,500. इट इज नॉट मॉस्किटो कॉइल बेसिकली, बट इट लुक्स लाइक वन. एंड दे आर सेलिंग इट फॉर 6,500 रुपीज.
2: 6,500 rupees for that coil shaped perfume
1: thing. Yeah, it will. It is a scent.
2: Okay.
1: So you know you can use it as a air purifier wala thing.
2: Wow. भाई सस्ते में बुखार ले लो यार, अच्छा मिलता है.
1: Exactly, such amazing fragrances. लुमान लगा लो.
2: लुमान is also a good air freshener.
1: ये चीज मेरे को बहुत अच्छी आदत लग गई है कतर में आके, स्पेशली बिकॉज ऑफ यू. एंड देन मैं इंडिया भी लेकर गई थी. नाउ माय मदर इज आल्सो ऑब्सेस्ड विद इट. सो जब भी मैं जाती हूँ मुझे बोलती है कि मेरे लिए बुकूर लेकर आना.
2: मैं जब पिछली बार गया था तो मैंने ऐसे गेस्ट आ रहे थे कुछ टाइम पहले, मुझे पता नहीं था, तो मैंने बुकूर ऐसे जला के रख दिया वहाँ पे. तो लोग आए बोले ये बहुत अच्छी खुशबू कहाँ से आ रही है.
1: Exactly.
2: ये तो है, ये अपना टेक्निक है करके. फिर मैं बता के देता हूँ लोगों को. तो जब मैं गया था तो मेरे एक फ्रेंड की मम्मी मेरे घर आई थी. तो मैं एक परफ्यूम ला के निकला तो बोली कि बा यार बहुत अच्छा महक रहा है तू. तो मैंने बोला ये वाला परफ्यूम लगा है. तो बोली मेरा बेटा भी दुबई में है, मेरे लिए परफ्यूम नहीं लाता. मैंने बोला ये जो ब्रांड मैंने खरीदा है इसका मेन तो दुबई में ही है. दुबई में इसके बहुत ज्यादा परफ्यूम मिलते हैं, मैं बताता हूँ आपको कौन सा. तो काइंड ऑफ मैं उस ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर बन गया. उन्हें पता भी नहीं इस मामले में.
1: Wow.
2: उन्हें पता भी नहीं कि, हाँ उन्हें पता भी नहीं है कि मैं एग्जिस्ट करता हूँ, ठीक है. बट मैंने उन्हें बताया कि ये वाला यूज करो, ये वाला वेरिएंट ट्राई करो, ये वाला अच्छा है, आपको ये वाला पसंद है तो ये वाला.
1: दैट थिंग तो ही डज फॉर मी आल्सो बिकॉज़ मैं बहुत ज्यादा चूजी हूं अबाउट दैट.
2: और मेरे दोस्त ने मुझे मैसेज किया कि भाई तू चुप हो जा. तू कुछ भी बोलते थे मम्मी से, मम्मी मुझे कह रही है कि ये वाला परफ्यूम ले गया था, ये वाला परफ्यूम ले गया था, ये वाला ले गया था.
1: ये वही बात होगी शर्मा जी के बेटे को देखो, यहाँ नायर जी का बेटा परेशान कर रहा है.
2: काइंड ऑफ वही. और ये हरकत मैंने वॉच के साथ भी की है रिसेंटली. मैं और तनीषा मैंने एक नई घड़ी खरीदी थी, उसका थोड़ा लेंथ एडजस्ट करने के लिए गए थे. तो वहाँ पे एक मोहतरमा थी, वो बहुत कंफ्यूज लग रही थी, उन्हें घड़ी खरीदनी थी किसी के लिए. तो मैंने पूछा आपको कैसी घड़ी चाहिए, क्या देख रहे हो आप? तो उन्होंने बोला मेरे फ्रेंड के बेटे के लिए 18 साल.
1: फ्री के सेल्समैन बन जाते हैं ये.
2: भाई मैंने बताया ये वाला है, ये एक अच्छा घड़ी है, अगर 18 साल का लड़का है थोड़ा कूल लगना चाहता है तो ऑल ब्लैक की घड़ी मैंने बताई. बट बात यह ना कि ये बात उनके पल्ले नहीं पड़ रही थी. फिर मैंने सोचा कि अब ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना, क्योंकि फिर वो सोचेंगे कि ये मैं इसकी बात सुन के मैं घड़ी लेके चली गई, लड़के को पसंद नहीं आया तो क्या करूंगी करके.
1: राइट.
2: तो मैंने उसे ठीक है यार बाकी इनको देखने तो करके.
1: बट देन शी लेफ्ट फ्रॉम देयर, शी डिडंट बाय.
2: मगर खास बात ये कि दुकानदार ने घड़ी का लेंथ एडजस्ट करने का पैसे नहीं लिया मेरे से. उसने बोला मेरा आधा काम तूने कर दिया तो ठीक है चले जा करके.
1: हाँ तो अगर आपको लगे ऐसी रिक्वायरमेंट, यू नीड अ सेल्समैन कन्विंसिंग पावर के साथ, तो आप सुदेव से कांटेक्ट कर सकते हैं.
2: ऑफिस में सब मानते हैं कि तनीषा की कन्विंसिंग पावर ही कन्विंसिंग पावर है, बाकी सब उसके तनीषा आगे आगे कोई बोल सकता है क्या?
1: ऑन दैट नोट, सेंडिंग अमेजिंग ट्रैक, स्टे ट्यून्ड एंड जियो विद अस.
2: मेरी जान.

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास। दोहा बैंक और लुलु लाए हैं शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
1: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलु मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलु शॉपिंग वाउचर।
0: लुलु स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलु पॉइंट्स के फॉर्म में।
1: प्लस इंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माय बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलु पर मिनिमम कतरी रियाल 1 स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
0: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026। दोहा बैंक लुलु MasterCard Platinum. Shopping now more rewarding. TNC apply.
2: Hi Radio Olive. Radio Olive. 106.3 listeners. This is Shahrukh Khan.
3: I'm in number one. Radio Olive.
4: Olive Suno Radio Network. Qatar's number one Asian Radio Network.

0: Tanisha.
1: Tanisha. You're listening to Radio Olive 106.3 FM. Jubeer Nautiyal aur Neeti Mohan ki awaaz mein socha hai from the movie Badshah suna aapne. Tanisha aur Sudev hai aapke saath Olive Recharge chal rahe hai yahan par. And Sudev, there's a new gadget in the market.
2: Okay.
1: So jinke bhi paas pets hain, you know, cats and all, to wo gadget khareed ke wo apne jab bhi pet kuch bolna chah rahe hai, any kind of sound they are making. You usually cannot understand. Kuch aise hote hain pet parents jinko samajh mein bhi aa jata hai.
2: Ji.
1: वो बहुत कम है. सो मोस्टली जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं उनके लिए ये गैजेट है. दे हैव टू जस्ट कीप दैट गैजेट इन फ्रंट ऑफ और नियर देयर माउथ द पेट्स एंड वो ट्रांसलेट करेगा इन वर्ड्स.
2: ओह वाओ.
1: या
2: वाओ यार, ये तो बहुत ही अमेजिंग है.
1: बट आई कैन नॉट अंडरस्टैंड हाउ दिस टेक्नोलॉजी इज वर्किंग बिकॉज इट्स हाउ
2: मुझे मेरा एक अजम्पशन है कि जिस तरीके से वो लोग अभी जो भी पेट है वो जो भी साउंड बनाएगा, अगर वो म्याऊ कर रहा है, पर कर रहा है, जो भी कर रहा है, तो आई थिंक एवरी इमोशन हैज अ फ्रीक्वेंसी एसोसिएटेड विद इट. जब हम बहुत दुखी हैं, ठीक है, अगर मैं फेल हो गया मैथ्स में तो मैं कभी ये आके नहीं बोलूंगा कि भाई मैं फेल हो गया. नहीं,
1: तू बोल सकता है.
2: ठीक है, नहीं मैं बोल सकता हूँ, बट जनरली जो है हम यार मैं फेल हो गया यार. तो इसका एक फ्रीक्वेंसी है.
1: ओके, लाइक दैट मे बी.
2: ये मेरा अजम्पशन है, मैं ये नहीं कह रहा कि शायद ये हो सकता है. ये मेरा अजम्पशन
1: है, प्रोबेबिलिटी
2: हो सकता है. बट वाओ यार, दैट इज सो नाइस,
1: दैट्स सो कूल. लाइक देयर वाज दिस एड विद दैट स्टोरी. सो वो बोल रहे थे, उसमें दिखा रहे थे कि कैट के पास रखा उसने एंड द कैट वाज मियाउइंग और वो ट्रांसलेट हुआ, मुझे भूख लग रही है, खाना दो.
2: अच्छा. ये एक्चुअली काफी कूल है.
1: Yeah,
2: और अगर कुछ साल पहले आता तो हम भी यूज कर लेते हैं. मेरे पास भी एक पेट है, मैंने और मेरे फ्रेंड्स ने मिलकर लिया था. और एक इंसिडेंट याद आया, जब हम खाने के लिए बैठे उसको खाना खिला दिया पेट भर के, खाना खाने के लिए जैसे ही हम बैठे वो वहीं से शुरू हो गया. भाई इतना जोर से उसने तंग किया हमें.
1: But यार पेट्स की बात अलग होती है, दे बिकम आवर एक्सटेंडेड फैमिली एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू यू नो गो थ्रू दैट लॉस.
2: एग्जैक्टली.
1: So yeah, not bringing the mood down right now. एक बढ़िया गाना भेज रहे हैं आपके लिए. Stay tuned, Andrew Bindas.
2: मेरी जान. Cool
3: song. Radio Olive पर आने वाला गाना Cool Song of the Hour.

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM बिंदास। दोहा बैंक और लुलु लाए हैं शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
1: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलु मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलु शॉपिंग वाउचर।
0: लुलु स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलु पॉइंट्स के फॉर्म में।
1: प्लस इंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माय बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलु पर मिनिमम कतरी रियाल 1 स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
0: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026। दोहा बैंक Lulu Mastercard Platinum. Shopping now more rewarding. TNC apply.
2: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM. Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM. And Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
3: लगा और हो जा रिचार्ज।
4: ओलिव रिचार्ज रेडियो ओलिव 106.3 FM पर जियो बिंदास।
3: ओलिव रिचार्ज।
5: This hour is brought to you by
6: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds ki har jewelry piece ethically sourced hoti hai aur aati hai Malabar Promise ke saath, jahan milti hai complete transparency aur bharosa.
7: In association with
8: Doha Bank,
1: make shopping more rewarding. Get a 500 Qatri Riyal Lulu voucher with your new Doha Bank Lulu Mastercard Platinum Credit Card. Just spend 1 Qatri Riyal to unlock up to 5% rewards. Apply before June 30th. TNC apply. Mera chai

0: Tanisha.
1: Tanisha. Alisha Chinoy aur Shankar Mahadevan ki awaaz mein Kajrare from the movie Bunty aur Bubbly. And Sudev, you know, Kajrare song mein dekha yoga gana tha.
2: Ji.
1: Aishwarya Rai ne bilkul makeup nahi kiya hua hai.
2: अरे बिना मेकअप के वो इतनी सुंदर है, मतलब मेकअप तो उन्हें मुझे लगता है कि मेकअप की जरूरत नहीं होने
1: एक्चुअली, एंड शी इज लुकिंग सो स्टनिंग, ओ माय गॉड,
2: बिल्कुल बिल्कुल,
1: मतलब नजर ही ना हटे, इतनी खूबसूरत लग रही है वो उसमें.
2: क्या बात कर दिया आपने, एक्चुअली सही बात कही आपने, क्योंकि अगर हम उन्हें देखते हैं उस परफॉर्मेंस में तो देखते रह जाते हैं. एक मूवी है, इट्स अ तमिल मूवी डायरेक्टेड बाय मणिरत्नम, आई थिंक यू शुड वॉच इट. इरुवर है मूवी का नाम.
1: इज इट जीन्स?
2: नो, इट्स इरुवर.
1: नो, लाइक हिंदी में एक जीन्स है,
2: वो तमिल में भी जीन्स है.
1: ओके ओके.
2: इरुवर एक है मूवी का नाम, एंड बहुत प्यारी मूवी है, बहुत प्यारी मतलब बहुत प्यारी मूवी है. उसमें छोटा सा रोल है ऐश्वर्या का, मगर वो जो रोल होता है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल भी होता है वो. तो आई थिंक मोहनलाल का सबसे पहला तमिल मूवी भी था, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, बट या काफी बढ़िया मूवी, अवार्ड विनिंग मूवी, कल्ट क्लासिक मूवी. जो ट्रू मूवी बफ्स हैं, जो सिनेफाइल लोग हैं, उनको ये मूवी बहुत पसंद है. मोहनलाल का एक डिफरेंट रूप भी उन्होंने उसमें देखा है. उसमें ऐश्वर्या जो है मोहनलाल की वाइफ बन के आती है कुछ टाइम के लिए, बट उसके बाद भी एक कैरेक्टर है उनका. तो देख लीजिए, आप चेकआउट कर सकते हैं.
1: यप, और साथ में चेकआउट कीजिए हमारा सोशल मीडिया, radioalive.qs the handle, फॉलो कीजिए, और जो भी पोस्ट है, वीडियोस है, उन्हें लाइक शेयर कमेंट कीजिए, इंटरेक्ट कीजिए. हमें पता चलना चाहिए कि आप तक चीजें पहुंच रही हैं.
2: Yes, तत्काल प्रभाव से तुरंत से पहले अभी के अभी.
1: जी, और फिलहाल भेज रहे हैं लत लग गई इन द वॉइस ऑफ बेग दयाल एंड शालमली खोलगड़े फ्रॉम रेस 2. स्टे ट्यून्ड, एंड जियो बिंदास.

0: Kolkata's number one radio station. Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindaas.
1: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन. रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है. कॉल 4411133. ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा. नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम.
2: लगा और हो जा रिचार्ज.
3: ऑलिव रिचार्ज, रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर. जियो बिंदास.
4: This hour is brought to you by
5: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds ki har jewelry piece ethically sourced hoti hai aur aati hai Malabar Promise ke saath, jahan milti hai complete transparency aur bharosa.
6: In association with
7: Doha Bank,
6: make shopping more rewarding. Get a 500 Qatri Riyal Lulu voucher with your new Doha Bank Lulu Mastercard Platinum Credit Card. Just spend 1 Qatri Riyal to unlock up to 5% rewards. Apply before June 30th. TNC apply.

0: You're listening to Radio Olive 106.3 FM. Dinesh aur Sudev ke saath hai. Olive Recharge par aur waqt ho gaya hai.
1: Jane ka Tata bye bye karke nikalne ka. To jaate jaate hum ye aapko yaad dilana chahenge ki apna khayal rakhna, apne khas logon ka khayal rakhna aur hame zara duaon mein याद रखना।
0: हाँ जी, और अभी थोड़ा सा वीकेंड और बाकी है, तो अगर अपने लिए वक्त नहीं निकाला है अभी तक तो प्लीज डू दैट मेरी जान, और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए, क्योंकि अब बहुत इम्पोर्टेंट है। और सुनते रहिए रेडियो ऑल ओवर 106.3 FM, जियो बिंदास।

तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे आरजे सिमरन के साथ जबरदस्त इवनिंग रोज शाम 5 से 9 ओनली ऑन 106.3 रेडियो ओलिव जियो बिंदा।

हाँ जी, मैं क्या जी सुने हो किता देखी हाल चाल लेकिन वीकेंड चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, जैसा भी आपका गया मुझे बताइएगा जरूर कि आपका वीकेंड कैसा रहा, और वीकेंड के साथ साथ आज का पूरा दिन आपका कैसा गया। थर्सडे तक का आप मुझे हिसाब जो है वो दे सकते हैं, थर्सडे नाइट से। मुझे नहीं पता कि आप क्या कर रहे हो, आपकी जिंदगी में क्या हुआ है, आप सब शेयर कर सकते हो गुड इवनिंग वाले मैसेजेस के साथ। चार घंटे में भी अपने होने वाले। व्हाट्सएप मैसेज करने के लिए मुझे भेज सकते हैं 3311063 पर। सुंदर ये रेडियो ऑलिव करके जियो बिंदास।

0: क्या आप एक प्रोफेशनल इलेक्ट्रीशियन या प्लम्बर हैं? तो अब अपनी स्किल्स को प्रूफ करने का वक्त आ गया है। हासिल कीजिए एक ऑफिशियल कहरामा सर्टिफिकेशन, पाइए अपना लाइसेंस जो आपके लिए कतर में नए जॉब अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे खोल देगा, एक ऐसे सर्टिफिकेट के साथ जो आपके ब्रिलियंस और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स का कमिटमेंट शो करता है। इस मौके को हाथ से जाने मत दीजिए, अभी रजिस्टर कीजिए और बन जाइए अपने फील्ड के टॉप कॉन्ट्रैक्टर्स और टेक्नीशियंस में से एक। बस विजिट कीजिए कहरामा की वेबसाइट www.km.qa और खुद को रजिस्टर कीजिए। सर्टिफाइड बनिए, सर्टिफाइड के साथ बनिए।
1: हाय, मैं हूँ सारिका। आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ऑलिव 106.3।
2: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।
3: बातें नहीं, एनर्जी का बूस्टर मिल रहा है क्योंकि चल रहा है जबरदस्त इवनिंग सिर्फ रेडियो ऑलिव पर। जियो बिंदास,
4: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद। बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
5: लुलू, हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

0: भाई साहब कल क्या हो गया था, कल तो लाइफ में भसड़े मच गई थी यार सबके। उसके बाद जब मैं स्टोरी अपलोड करने लगी तो मेरी स्टोरी नहीं अपलोड हो रही है भाई, 4 घंटे 5 घंटे मेरी स्टोरी स्टक रही है, ना मैं उसको डिलीट कर पा रही हूँ ना ही वो अपलोड हो रही है। सो बाद में पता लगा कि भाई इंस्टाग्राम जो है वो डाउन है, बहुत सारे लोगों को मैसेज पे प्रॉब्लम आ रही थी, बहुत सारे लोगों को स्टोरीज में प्रॉब्लम आ रही थी, पोस्ट नहीं हो रहा था कुछ। सो या फाइनली अभी बैक टू नॉर्मल, अभी कुछ ऐसी दिक्कत परेशानी जो है वो नहीं लग रही है। सुंदरी के रेडियो ऑलिव कोर के दिए जियो बिंदास, क्या आपके साथ भी ये हुआ था क्या, नॉर्मल चल रहा था आपका, बताओ मुझे 3311063 पे मैसेज करके।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. दोहा बैंक और लुलू लाए है शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस.
1: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलू शॉपिंग वाउचर.
0: लुलू स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलू पॉइंट्स के फॉर्म में.
1: प्लस इंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माई बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफ स्टाइल प्रिविलेजेस. बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलू पर मिनिमम कतरी रियाल 1 स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए.
0: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026. दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम शॉपिंग नाउ मोर रिवॉर्डिंग TNC अप्लाई.
2: बातें नहीं एनर्जी का बूस्टर मिल रहा है क्योंकि चल रहा है जबरदस्त इवनिंग सिर्फ रेडियो ओलिव पर जियो बिंदास.
3: Zabardast evening, make you drive golden with.
4: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
5: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

तो थर्सडे जब मैं शो खत्म कर रही थी तो मैंने आपको एक बात बोली थी कि भाई मैं फिल्म देखने जा रही हूँ, मैं वापस आऊंगा। फाइनली ये देखो ऑलमोस्ट सबने, तनिषा ने भी ये फिल्म जो है वो देख ली है, मैंने भी देख ली, सुदेव ने भी देख ली है, तो सबका अपना अपना एक रिव्यू होता है यार। सो फॉर मी मैं वापस आऊंगा फिल्म, यार मुझे बहुत ही कमाल की लगी। वो इम्तियाज अली जो है, जिनसे हम ऐसी फिल्मों को का जो है वो एक्सपेक्टेशन करते हैं कि भाई ये फिल्में खत्म होने के बाद भी आपके जहन के अंदर जो है वो रह जाती है। फिल्म बाकमाल थी यार। पहला घंटा जो था वो मुझे थोड़ा सा स्ट्रेच्ड लगा, लेकिन अगले घंटे में बहुत सारे इमोशंस थे यार, बहुत सारा प्यार, बिछड़ना, गुस्सा, नाराजगी और बहुत कुछ था यार। एंड बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से जो है वो सारी चीजें दिखाई गई। एंड नसीरुद्दीन शाह ऑफकोर्स एक बैकबोन थी इस फिल्म की, उसके साथ जो यंग नसीरुद्दीन शाह थे जो कि वेदांग रैना, बहुत ही कमाल, बड़े क्यूट से सरदार बने हुए थे यार, बड़े जच रहे थे। एंड दिलजीत दोसांझ बहुत ही कमाल का कैरेक्टर था उनका, शार्वरी ने भी बहुत प्यारी एक्टिंग की। कुल मिला के ये फिल्म जो है बहुत कमाल है। अगर आपको लव स्टोरीज, दर्द, बिछड़ना, रोना, ये चीजें, ऐसी स्टोरीज अच्छी लगती हैं तो डेफिनेटली इट्स फॉर यू। एंड बहुत सारी चीजें जो है आपको इस फिल्म में हिट करने वाली हैं, क्योंकि बहुत सारे सीन ऐसे हैं। So yeah, for me, I loved it, yaar. Sundariya Radio, Olive Gore ke teriye Jio Bindaas.

0: सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरेडू ऐप पर. Experience more with ओरेडू.
0: दोहा बैंक और लुलु लाए है शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस.
2: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलु मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलु शॉपिंग वाउचर.
0: लुलु स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलु पॉइंट्स के फॉर्म में.
2: प्लस एंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माय बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस. बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलु पर मिनिमम कतरी रियाल 1 स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए.
0: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026. दोहा बैंक Lulu Mastercard Platinum. Shopping now more rewarding. TNC apply.
3: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM. Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM. And Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
4: बातें नहीं, एनर्जी का बूस्टर मिल रहा है क्योंकि चल रहा है जबरदस्त इवनिंग सिर्फ रेडियो ओलिव पर. जियो बिंदास.
5: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद
6: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास. जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी.
7: लुलु हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप.

Era Instagram pe cerurie. पूरा का पूरा 2022 में जो वर्ल्ड कप हुआ था वो हम सब के लिए स्पेशल था, लेकिन उसमें से एक आज एक मेमोरी शेयर हुई जिसमें पोस्ट मेलोन ने जो था वो लाइव परफॉर्म किया था। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं यार, मतलब वो मेमोरीज मेरे सामने आई तो यार बड़ा अच्छा लगा। लेकिन आज फिर से थोड़ा सा रिलीव करिएगा क्योंकि फीफा वर्ल्ड कप जो है वो चल रहा है। आज कतर का मैच होने वाला है, कतर और स्विट्जरलैंड के बीच में रात को 10 बजे। बहुत सारे फैन जोन्स बने हुए हैं जो है, और बहुत सारी जगह पर मैच जो है वो दिखाया जा रहा है। सो मेक श्योर कि आप ये मैच जो है वो जरूर करें, अपनी टीम को चीयर करें एंड सुनते रहो रेडियो ओलिव और कहते रहिए जियो बिंदास।

0: 26 million reals dream.
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 million reals cash prizes.
0: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 reals ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.
2: सिर्फ नंबर वन लोग सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 107.4.

0: लाइफ में कुछ अच्छा हो जाए उसके लिए तो हम फैमिली वालों को बता देते हैं, लेकिन लाइफ में अगर कोई भसड़ मच जाए तो सबसे पहला कॉल किसको जाता है? आपके बेस्ट फ्रेंड को।
1: रेडियो ऑलिव पर व्हाट अ वायरल क्या बात है, आरजे सिमरन के साथ व्हाट द वायरल ये बात है।
0: हमारी लाइफ में कितनी भसड़ मची है, क्या कर रहे हैं हम, ये हमारी फैमिली को पता हो ना हो, हमारे बेस्ट फ्रेंड को जरूर पता होता है। सो या ये एक ट्रेंड है, अपने बेस्ट फ्रेंड को अब कॉल करना सेल्फ केयर जो है वो कहलाता है। ये एक नया ट्रेंड बनता जा रहा है कि अगर आपको सेल्फ केयर चाहिए तो आप अपने बेस्ट फ्रेंड को कॉल कर रहे हो और अपने पूरे दिन की या पूरी जिंदगी की भसड़ जो है वो उसको बता रहे हो। और मेरे को भी वाकई ये लगता है कि जब तक मैं, मेरे पेट में जितनी भी बातें हैं वो पचेंगी नहीं जब तक मैं अपने सारे बातें जो है अपने दोस्तों को ना बता दूं कि यार ये चल रहा है, मैंने ये कांड कर दिया, ये हो गया। फैमिली को उतना ना बताओ लेकिन आपके दोस्तों को जरूर पता होता है, इसीलिए जब भी कुछ भी होता है आपके फैमिली वाले आपके दोस्तों को कॉल करते हैं। सो या क्या है आपकी लाइफ में जिसको आप कॉल करते हो और सब बताते हो, बताइएगा मुझे 3311106 पर। जियो बिंदास।

0: பாட்டு தான் தூடா.
1: सिर्फ नंबर वन लोग सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. दोहा बैंक और लुलू लाए हैं शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस.
2: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलू शॉपिंग वाउचर.
1: लुलू स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलू पॉइंट्स के फॉर्म में.
2: प्लस इंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माई बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस. बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलू पर मिनिमम कतरी रियाल एक स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए.
1: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026. दोहा बैंक लुलू मास्टरकार्ड प्लैटिनम शॉपिंग नाउ मोर रिवॉर्डिंग टीएनसी अप्लाई.
3: मैं हूं अनिल कपूर, रेडियो ओलिव, यू बिंदास.
4: ओलिव सुनो रेडियो नेटवर्क कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क.
5: रेडियो ओलिव नंबर वन.
6: बातें नहीं एनर्जी का बूस्टर मिल रहा है क्योंकि चल रहा है जबरदस्त इवनिंग सिर्फ रेडियो ओलिव पर. Jio Bindas.
7: Zabardast evening.
8: Zabardast evening. Make your drive golden with.
9: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
10: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores where the world comes to shop.

0: भाई साहब टेम्परेचर वाकई में फ्राइडे जो था ना कल, ओ माय गॉड, पानी से आपको समझ लग रहा है। और बाहर की गर्मी आपको ये बता रही थी कि बाहर निकालोगे तो जल जाओगे। यार मैं बाहर, मुझे भी याद है कि मैं ऑर्डर लेने गई थी और मैं भैया को जो मशीन थी ना लेने वाली, जो क्या कहते हैं एटीएम वाली मशीन रहती है, सो वो निकालने में टाइम लग रहा था। मैंने बोला भैया जल्दी करो, मैं जल जाऊंगी, क्योंकि भैया ने अपने आप को अच्छे से कवर किया होता है, जो कि बहुत बढ़िया बात है। एंड सैल्यूट है जितने भी डिलीवरी वाले भैया हैं कि आप इतनी गर्मी में भी काम कर रहे हो। और एक चीज ये भी अच्छी लगती है कि अभी सिर्फ कार्ड से डिलीवरी जो है वो अलाउड है, सो काफी हद तक बढ़िया हो जाता है। लेकिन वाकई में बाहर की गर्मी बेटा नहीं चाहिए, कोई दोस्ती नहीं करनी है यार तुमसे। और आज के टेम्परेचर की बात करें, आज का मैक्सिमम टेम्परेचर 41 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम 32 डिग्री सेल्सियस, ह्यूमिडिटी 18% एंड विंड जो है 29 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रही है। सिमरन गौरी आपके साथ, जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है।

0: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडू ऐप पर. Experience more with ओरिडू.
1: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
2: Baatein nahi, energy ka booster mil raha hai. क्योंकि चल रहा है जबरदस्त इवनिंग सिर्फ रेडियो ओलिव पर जियो बिंदास
3: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विथ
4: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास. जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी.
5: लुलु हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप.

0: listening to Radio Olive 106.3 FM. दोहा बैंक और लुलु लाए हैं शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
1: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलु मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलु शॉपिंग वाउचर।
0: लुलु स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलु पॉइंट्स के फॉर्म में।
1: प्लस एंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माय बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलु पर मिनिमम कतरी रियाल 1 स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
0: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026। दोहा बैंक लुलु मास्टरकार्ड प्लैटिनम शॉपिंग नाउ मोर रिवॉर्डिंग। टीएनसी अप्लाई।
2: बातें नहीं, एनर्जी का बूस्टर मिल रहा है क्योंकि चल रहा है जबरदस्त इवनिंग सिर्फ रेडियो ओलिव पर। जियो बिंदास,
3: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद।
4: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
5: लुलु हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

कोई ना कोई ये चैलेंज जो है वो ले रहा होता है। शिल्पा शेट्टी को भी मैंने देखा था, बहुत सारे लोग जो है 7 दिन के लिए शुगर छोड़ देते हैं, कुछ लोग 3 दिन के लिए शुगर छोड़ देते हैं, कुछ लोग 1 महीने के लिए शुगर छोड़ देते हैं, जो कुछ लोग पूरी लाइफ के लिए बोलते हैं हम शुगर नहीं खाएंगे। उनके लिए मैं बिल्कुल भी, मतलब मुझे नहीं पता, मैं नहीं कर सकती ये चीज, बट यस ऐसा बोलते हैं कि शुगर आप कुछ दिनों तक अगर स्टॉप करते हैं सो आपके लिए पहले 1-2 दिन काफी ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि आदत कोई भी छूटती है तो फिर दिमाग खराब करती है। बट उसके बाद ऐसे बोलते हैं कि शुगर को छोड़ने से ना एनर्जी बढ़िया हो जाती है, डाइजेशन बढ़िया हो जाता है, ब्लोटिंग वगैरह की जिनको प्रॉब्लम है और ब्लड शुगर जो है स्पाइक, उस बहुत सारी चीजें जो है वो स्टेबलाइज हो जाती है, हॉर्मोन्स एंड काफी आपकी हेल्थ पे, आपके चेहरे में जो है वो दिखता है। तो कभी कभार ये चीजें डॉक्टर से या फिर अपने जिम ट्रेनर से जो भी है बात करके एक बार ट्राई करके देखो कि आप ये जो यू नो नो शुगर वाला चैलेंज जो है वो कर सकते हैं, लेकिन जिनका शुगर हमेशा लो रहता है वो नहीं करें। इसीलिए जब भी कोई ऐसा चैलेंज लें या फिर हेल्थ रिलेटेड कोई भी चीज करें कि सोशल मीडिया पे शिल्पा शेट्टी कर रही है तो मैं भी करूंगा या करूंगी, नहीं, शिल्पा शेट्टी की बॉडी अलग है, आपकी बॉडी अलग है। तो आपको कोई भी इस तरह की क्रैश डाइट करनी है या नो शुगर डाइट करनी है, कोई भी डाइट करनी है, वो अपने डॉक्टर से, अपने डाइट वाले से, अपने जिम वाले से पूछ के करनी है, ठीक है। चैट जीपीटी करते हो, चैट जीपीटी हर चीज में बढ़िया बताती है, लेकिन आपका डॉक्टर आपको चैट जीपीटी से ज्यादा आपको जानता है। सुंदर ओनली ऑलिव करके दे रहो जियो बिंदास।

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindas.
1: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडो ऐप पर. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो.
2: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए.
3: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ.
2: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
3: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की.
2: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो. आज ही शुरू करो सेविंग्स. कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन.
0: सिर्फ नंबर वन लोग सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.

0: एक्चुअली हम सबके साथ होता है.
1: Gen Z, decoded.
2: ऐसे ही क्या?
0: तंजी. कभी ये नोटिस किया है कि कोई इंसान आपका बहुत ज्यादा फेवरेट है, आपको बहुत ज्यादा पसंद है, सडनली वो कुछ ऐसा आपकी लाइफ में जो है वो कर देता है, कुछ ऐसा बोल देता है जिससे जो है वो आपका टर्न ऑफ हो जाता है. उसको जेंजी स्लैंग में बोलते हैं द इक. एग्जैक्टली. सो मैंने थोड़े दिन पहले इसके बारे में सुना था और चीज मुझे बड़ी ज्यादा अच्छी लगी. सो यस, ये वर्ड जो है वो आप उनके लिए यूज करते हैं जो कि सडनली आपको किसी का बिहेवियर जो है वो ट्रिगर कर जाता है. सो या, इस वर्ड को बोलते हैं द इक. सुनते रहिए रेडियो ऑलिव कर, कहते रहिए जियो बिंदास.

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। दोहा बैंक और लुलू लाए है शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
1: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलू शॉपिंग वाउचर।
0: लुलू स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलू पॉइंट्स के फॉर्म में।
1: प्लस इंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माई बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफ स्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलू पर मिनिमम कतरी रियाल 1 स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
0: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026। दोहा बैंक लुलू MasterCard Platinum. Shopping now more rewarding. TNC apply.
2: Hi Radio Olive 106.3 listeners. This is Ranveer Singh. Stay tuned.
3: Olive Suno Radio Network. Qatar's number one Asian radio network.
4: Radio Olive, our number one.
5: बातें नहीं, एनर्जी का बूस्टर मिल रहा है क्योंकि चल रहा है जबरदस्त इवनिंग सिर्फ रेडियो ओलिव पर। जियो बिंदास,
6: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद।
7: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
8: लुलू, हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

0: आपकी बंदी या फिर आपकी मम्मी अगर आपसे रूठी हुई है या फिर आपकी श्रीमती। जाके ना उनके बढ़िया बढ़िया डिजाइन है, उसमें से एक डिजाइन आप सिलेक्ट करके उनको गिफ्ट कर दो, उनका कुछ फेवरेट। अगर ज्यादा खर्चा नहीं करना चाहते, उनके ओल्ड गोल्ड ज्वेलरी को ही एक्सचेंज करवा दो नए डिजाइन के साथ, बस मेकिंग चार्जेस आपको पे करने हैं। एंड उसके साथ साथ जो है वो इम्पोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया, इसकी वजह से आपको अप टू 50% गोल्ड प्राइसेस पर जो है वो आप सेव भी कर सकते हो। सो आपका फायदा ही होगा जब आप जाएंगे मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स, और आपकी वाली जो रूठी हुई है या फिर जिसको आप स्पेशल फील करवाना चाहते हैं, कुछ स्पेशल देना चाहते हैं, सारी चीज का जुगाड़ है यहाँ पर। बड़े अच्छे अच्छे डिजाइन है यार। सिमरन कौर आपके साथ, जियो बिंदास।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: The 26 million reals dream.
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 million reals cash prizes.
0: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 reals ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.
2: बातें नहीं, एनर्जी का बूस्टर मिल रहा है क्योंकि चल रहा है जबरदस्त इवनिंग सिर्फ रेडियो ओलिव पर. जियो बिंदास.
3: Zabardast evening. Make you drive golden with. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
4: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores. Where the world comes to shop.

भी ना नेक्स्ट टाइम ये ट्रिक जो है वो ट्राई करके देखिएगा। भाई ने मेरे पे आजमा के जो है वो देखी है। मैं जी सोनियो की दादी की हालचाल, सत श्री अकाल, सिमरन कौर आपके साथ। जब दीदी जीजू की कोई बात मुझे मेरे भाई तक पहुंचानी होती है, जब क्या होता है कि बड़े बाद में ही इन्वॉल्व होते हैं। अब मेरा भाई मेरे से छोटा है बट मैं मेरी दीदी से छोटी हूँ, तो अगर उनको कोई बात जो है वो मेरे भाई तक पहुंचानी और उनको लग रहा है कि जब वो ये बात करेंगे तो उस बात पे वो गुस्सा कर देंगे, तो वो बीच में मीडिएटर मुझे बनाते हैं कि तू पहले उससे बात कर ले, अगर नहीं हुई सुलझी तो फिर हम बात करेंगे। और मैं भी बोलती हूँ यार मेरे को बोल दिया। और अब मेरा क्या है कि मैं ना अगर समय मुझे पता है कि मेरा भाई है, मेरा भाई मुझसे छोटा है और जो मैं बोल रही हूँ मैं उसके भले के ही बोल रही हूँ, जब वो मेरी बात नहीं सुनता ना फिर मुझे गुस्सा आ जाता है, फिर मैं फट जाती हूँ। मतलब मैं फोन रख के फट जाती हूँ, मैं उसके सामने बहुत कम फटती हूँ, क्योंकि जब मेरे को गुस्सा आता है ना मैं फोन रख देती हूँ, तो वो मुझे ये होता है कि जब मेरा गुस्सा शांत हो जाएगा फिर मैं प्यार से समझा पाऊंगी, क्योंकि अभी तो मेरी बात नहीं समझ रहा। अब मेरे भाई ने किस तरह से मेरा कोड जो है वो क्रैक कर लिया है। अब क्या हुआ कि मैंने उसको समझाने की कुछ कोशिश की जो कि मेरी दीदी जीजू ने मुझे बोला था उसको बोलने के लिए। अब मैं जब उसको समझा रही हूँ वो नहीं समझ रहा, मैंने फोन रख दिया। तो मैंने उसको एक दो मैसेज कर दिए कि नेक्स्ट टाइम जब तू मेरे से बात करेगा तो पहले तो आराम से बात करना मेरे से, ठीक है। तो आगे से उसने पता क्या किया, उसने मुझे इतने सारे प्यारे प्यारे मैसेजेस भेज दिए और प्यार वाले इमोजी भेज दिए कि दीदी कोई बात नहीं हम आराम से बात करेंगे। जो मुझे इतना गुस्सा आया हुआ था वो उसके प्यार भरे मैसेजेस देख के ना मेरा सारा गुस्सा चला गया। तो नेक्स्ट टाइम आप लोग भी ट्राई करेगा, अगर किसी को गुस्सा आ रहा हो और आपको ये भी समझ लग जाए कि आप गलत हो चाहे नहीं भी गलत हो, अगर आप वो सिचुएशन से निकलना चाहते हो और सिचुएशन को काम करना चाहते हो क्योंकि आप सामने वाले से प्यार करते हो, है ना, तो आप ये वाली ट्रिक अपना के रखिएगा। मेरा सारा गुस्सा शांत हो गया, बड़ी मुश्किल से आया था। एक तो छोटे भाई पे रोब बनता नहीं है, अगर रोब बनाने की कोशिश करूं तो शांत कर देता है यार वो मुझे। सुनते रहो रेडियो ऑलिव, कहते रहो।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. दोहा बैंक और लुलू लाए है शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस.
1: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलू शॉपिंग वाउचर.
0: लुलू स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलू पॉइंट्स के फॉर्म में.
1: प्लस इंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माई बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफ स्टाइल प्रिविलेजेस. बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलू पर मिनिमम कतरी रियाल एक स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए.
0: ऑफर वैलिड टिल 30 June 2026. दोहा बैंक Lulu Mastercard Platinum. Shopping now more rewarding. TNC apply.
2: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
3: बातें नहीं, एनर्जी का बूस्टर मिल रहा है क्योंकि चल रहा है जबरदस्त इवनिंग सिर्फ रेडियो ओलिव पर. जियो बिंदास
4: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास. जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी.
5: लुलू हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप.

0: एवरीवन, मैं हूं अरमान मलिक. नंबर 106.3 FM रेडियो ऑलिव जियो बिंदास.
1: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क कतर्स नंबर 1 एशियन रेडियो नेटवर्क.

0: लाइफ में ना एक्सपीरियंस होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है।
1: रेडियो ऑलिव पर आरजे सिमरन के साथ।
0: हाँ जी, आपने बहुत सारे लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि मैं नहीं चाहता कि तेरे साथ ये हो, मैं नहीं चाहती कि तेरे साथ ये हो, है ना। क्योंकि वो जो लोग ऐसा बोलते हैं ना, उन्होंने अपनी लाइफ में ऑलरेडी धक्के खा लिए हैं, ऑलरेडी भसड़े मच चुकी हैं, ऑलरेडी उन्होंने एक्सपीरियंस कर लिया है। तो जब बात किसी को समझाने की आती है, और आप एक्सपीरियंस जो आपको सामने दिख रहा है कि क्या होने वाला है और क्या हो रहा है, लेकिन क्या होता है कि जब हमारा टाइम था, ओके, सो उस टाइम पे अगर हमको कोई समझा रहा है तो हम नहीं समझते हैं। मुझे लगता है कि हर किसी का ना एक ठोकर खाना बहुत जरूरी है लाइफ में, तभी आप संभलोगे, वरना वो काम आप बार बार करोगे क्योंकि आपको शक रहेगा सामने वाले पे। अरे नहीं, इसके साथ अगर ऐसा हुआ है तो जरूरी नहीं मेरे साथ ही ऐसा होगा, अरे इतना नेगेटिव मैं क्यों सोचू। सो मुझे लगता है कि इट्स ओके, आप अपनी तरफ से सामने वाले को बोल सकते हो कि यार मैं नहीं चाहता तू ये करे, क्योंकि आपको वो चीज दिख रही है, आपके साथ भी वो चीज हुई है, बट सामने वाला इसलिए समझने के लिए तैयार नहीं क्योंकि उसने वो स्वाद चखा ही नहीं है, उसने वो धक्का खाया ही नहीं, उसने वो लात खाई ही नहीं है। तो एक बार खा लेना दोस्त को भी, वो भी समझ जाएगा, फिर किसी दिन बैठा होगा किसी के साथ उसको ये समझाने के लिए कि मैं नहीं चाहता तुम ये करो। सो या सुन रहे हो रेडियो ऑलिव, कहते रहो जियो बिंदास, एक्सपीरियंस सभी को जरूरी है।

0: Qatar's number one radio station. Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindaas. Doha Bank और Lulu लाए हैं शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
1: अब अप्लाई कीजिए Doha Bank Lulu Mastercard Platinum Credit Card के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 Lulu शॉपिंग वाउचर।
0: Lulu स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स Lulu पॉइंट्स के फॉर्म में।
1: प्लस एंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माई बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए Lulu पर मिनिमम कतरी रियाल एक स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
0: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026। Doha Bank Lulu Mastercard Platinum. Shopping now more rewarding. TNC apply.

0: सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: Fish on the grill, slow-cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama. Just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience. Served with pride. Danadal Pahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif, Al Khul.
2: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
3: Hello listeners, mera naam hai Rajpal Yadav. Rajpal Yadav. और आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास
4: ओलिव सुनो रेडियो नेटवर्क कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क रेडियो ओलिव
5: नंबर वन बातें नहीं एनर्जी का बूस्टर मिल रहा है क्योंकि चल रहा है जबरदस्त इवनिंग सिर्फ रेडियो ओलिव पर जियो बिंदास
6: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी
7: लुलू हाइपरमार्केट्स सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप

0: कभी कभी आपको ये लगता है कि आपने ये फिल्म देखी हुई है। सर्च कर रही थी कि कोई तो ऐसा माइंड बेंडिंग मूवी देखनी है यार, देखनी है, तो मेरे को मूवी दिखी द इनविजिबल मैन, जो कि 2020 में आ चुकी थी। अब जब ये फिल्म मैंने स्टार्ट की देखने के लिए, मुझे बार बार लग रहा है ये फिल्म मैंने देखी है, लेकिन ये फिल्म ऐसी है, लेट मी टेल यू, ये साइंस फिक्शन हॉरर फिल्म काइंड ऑफ ऐसा दिमाग थ्रिलर मूवी है। ये आपके दिमाग के साथ इस तरह का खेल खेलेगी कि शुरू के सीन से लेके लास्ट के सीन तक आप उठ ही नहीं पाओगे। अब मैंने शुरुआत कर दी, मुझे लग रहा है ये देखी हुई लेकिन फिल्म ऐसी है कि आप उठ ही नहीं पाओगे। लास्ट तक भी मैं याद करने की कोशिश कर रही थी कि यार ये फिल्म शायद मैंने देखी हुई है। सो कोई बात नहीं, उस चीज को साइड में रखते हैं। तो कल रात मैंने अराउंड 12 बजे फिल्म को देखना स्टार्ट किया, और मुझे पता है कि सैटरडे मुझे अर्ली मॉर्निंग उठना होता है, लेकिन मैंने अपने आप की नहीं सुनी और ये फिल्म मैंने देखी। सो द इनविजिबल मैन आपको मिल जाएगी नेटफ्लिक्स पे, 2020 में आई थी फिल्म, बहुत ही प्यारी फिल्म है भाई साहब। वो एक बंदी है ओके, जो कि एक अब्यूसिव रिलेशनशिप में फंस जाती है, और उसके बाद उसकी जिंदगी में क्या होता है, क्योंकि उसके पति ने एक ऐसा सूट जो है वो इजाद किया है जो कि उसको पहनने के बाद वो इनविजिबल हो जाता है। फिर सडनली पता लगता है कि वो मर गया है, लेकिन वो मर गया है कि नहीं मर गया है, आप ये फिल्म देख लीजिए, वरना मैं स्टोरी बता दूंगी, नहीं बताऊंगी यार, डोंट वरी। सो अगर आपको ऐसी फिल्में अच्छी लगती हैं तो डेफिनेटली आप देखिएगा। सिमरन गौरी आपके साथ, चियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास। दोहा बैंक और लुलु लाए है शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
1: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलु मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलु शॉपिंग वाउचर।
0: लुलु स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलु पॉइंट्स के फॉर्म में।
1: प्लस इंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माई बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफ स्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलु पर मिनिमम कतरी रियाल 1 स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
0: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026। दोहा बैंक लुलु मास्टरकार्ड प्लैटिनम शॉपिंग नाउ मोर रिवॉर्डिंग। टीएनसी अप्लाई।
2: बातें नहीं, एनर्जी का बूस्टर मिल रहा है क्योंकि चल रहा है जबरदस्त इवनिंग सिर्फ रेडियो ओलिव पर जियो बिंदास।
3: Zabardast evening, make you drive golden with.
4: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
5: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores where the world comes to shop.
6: Just feel like you're
5: Markets, supermarkets and department stores where the world comes to shop.
6: Just

पूरा हफ्ता प्रोटीन का इंटेक पूरा करने में बीत जाता है। प्रोटीन का इंटेक तो वैसे वीकेंड पे भी पूरा करना होता है। थोड़ा सा चीट डे जो है वो आपका चलता है, चीट मील जो है वो चलता है। तो जिस दिन मैं फिल्म देखने गई ना, मैं वापस आऊंगा, भाई मेरे को बड़ी गंदी क्रेविंग हो रही थी पैनकेक्स खाने। यार मेरे को बहुत पसंद है पैनकेक्स खाने। सो मैंने एक मिनट भी नहीं सोचा, खाने खाते खाते सोच रही थी बीच में, जब पेट भरने लग गया था तो उसके बाद इंसान सोचता अरे क्यों खाए यार, क्या जरूरत थी, इतनी क्या आग लग रखी थी। मैं अपने आप को ऐसी बातें करती हूँ। सो या वीकेंड पे मैंने मेरा फेवरेट वाला मील खाया, पैनकेक्स खाया, पास्ता भी मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। सो या ये चीजें आपको अगर अंदर से खुशी दे रही हैं, आपको लग रहा है कि इसको खाने के बाद आपको अच्छा लगेगा, फिर पूरा हफ्ता मैं एकदम स्ट्रिक्टली जो है वो अपने पूरे प्रोटीन गोल्स को पूरा कर लूंगी और हेल्दी खाऊंगी, तो खा लो यार, कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी सोचती हूँ कि ना खाऊं, लेकिन जब खाना सामने आता है और दिख जाता है तो फिर मेरे से कंट्रोल नहीं होता है। तो कंट्रोल करना भी क्यों है, बट रोज रोज जरूर कंट्रोल करना। अगर आपकी जीभ आपको रोज रोज बोल रही है ना कि बेटा ये खाओ वो खाओ, तो आपकी जीभ को थोड़ा सा बोलो लगाम दो बेटा अपने आप को। लेकिन कभी कभार चीट डे चीट मील चलता है, चीट मील ही चले, चीट डे ना चले, क्योंकि पूरे दिन में हफ्ते भर के सत्यानाश कर लेंगे हम जो भी हमारी बॉडी ने रिकवर किया है। तो सिमरन कौर आपके साथ जियो बिंदास।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो Ooredoo ऐप पर. एक्सपीरियंस मोर विद Ooredoo.
0: दोहा बैंक और लुलु लाए है शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस.
2: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलु मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलु शॉपिंग वाउचर.
0: लुलु स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलु पॉइंट्स के फॉर्म में.
2: प्लस एंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माई बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस. बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलु पर मिनिमम कतरी रियाल 1 स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए.
0: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026. दोहा बैंक लुलु मास्टर कार्ड प्लैटिनम. शॉपिंग नाउ मोर रिवॉर्डिंग. TNC अप्लाई.
3: बातें नहीं, एनर्जी का बूस्टर मिल रहा है क्योंकि चल रहा है जबरदस्त इवनिंग सिर्फ रेडियो ओलिव पर. जियो बिंदास.
4: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद. बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास. जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी.
5: लुलु हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप.

0: बात ऐसी है दोस्तों कि सिमरन कौर के यहाँ से गल्डी माने का टाइम आ गया। अगले दो घंटे मिडनाइट लाउंज को एंजॉय करिएगा और बताते रहा करो यार आपको शो कैसा लगता है, म्यूजिक कैसा लगता है, कुछ भी दिल में अगर आपके है तो मुझे पता है बहुत सारे लिसनर्स रहते हैं, अरे सिमरन मैं तो तुम्हारा साइलेंट लिसनर हूँ, तो दोस्त कभी तो बोलो यार, कभी तो अपना मुंह खोलो, मुझे अच्छा लगेगा अगर आप मुझे बताओगे कि आप मुझे कहाँ से सुनते हो, कितनी देर से सुनते हो, क्या अच्छा लगता है आपको। 3311063 पर हमेशा भेज सकते हो यार। सो अभी के लिए खाते पीने रो ऐश कर दे रो, चेहरे पे बड़े वाली स्माइल रखो, किसी का दिल मत दुखाना, बी नाइस टू एवरीवन यार, गुड नाइट, जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड लव यू सो किलो।
1: रेडियो ऑलिव पर Song of the Year. Yeah, guys.

0: दोहा बैंक और लुलू लाए है शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
1: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलू शॉपिंग वाउचर।
0: लुलू स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलू पॉइंट्स के फॉर्म में।
1: प्लस एंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माई बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलू पर मिनिमम कतरी रियाल 1 स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
0: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026। दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम। शॉपिंग नाउ मोर रिवॉर्डिंग। TNC अप्लाई।

गुड इवनिंग एंड हैप्पी सैटरडे. यू आर लिस्निंग रेडियो ऑल ऑफ 106.3 FM. मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम है मिडनाइट लाउंज. आज रात एक ऐसे दरवाजे की बात करते हैं जो अभी खुला ही नहीं, और शायद अच्छा हुआ कि नहीं खुला. हम सबकी जिंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो उस वक्त हम बहुत बुरा फील करते हैं, जो चीज़ हमें नहीं मिलती, जैसे कि कोई वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है, कोई बिजनेस आइडिया फेल हो जाता है, कोई रिलेशनशिप ख़त्म हो जाता है, और उस वक्त लगता है कि बस सब खत्म हो गया. लेकिन फिर सालों बाद जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो रियलाइज होता है कि शायद वही रिजेक्शन जो था वो प्रोटेक्शन था. स्टीव जॉब्स ने एक बार कहा था कि यू कैन कनेक्ट द डॉट्स लुकिंग फॉरवर्ड, यू कैन ओनली कनेक्ट दी देम, मतलब जब आप पीछे देखते हो. ठीक है, उस वक्त जो दरवाज़ा बंद हुआ था उसने शायद आपको किसी और रास्ते पर भेज दिया था, एक बेटर सिटी, एक बेटर जॉब, एक बेटर इंसान, और मे बी एक बेटर कंट्री. सो ये शायद एक बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ है. इंटरेस्टिंग बात ये है कि लाइफ में हम सब उन चीज़ों को सेलिब्रेट करते हैं जो मिल गई हैं, लेकिन कई बार मतलब जो नहीं मिला उसने ज़्यादा बड़ा रोल प्ले किया होता है. तो आज रात का सवाल यही है कि कौन सा दरवाज़ा था जो कभी नहीं खुला, और आज आप उसके लिए क्यों इतने थैंकफुल फील करते हो, आपको क्यों लगता है कि यार अच्छा हुआ ये नहीं हो पाया. यू आर लिस्निंग रेडियो ऑल ऑफ 106.3 FM और मेरा नंबर है 3311-1063. स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.

सो आज एक मेमोरी टेस्ट करते हैं. मैं गारंटी देती हूँ कि इस वक्त भी आपके दिमाग में कोई पुराना फोन नंबर होगा जो आप बिना देखे बोल सकते हो. कोई यू नो फर्स्ट योर मोबाइल नंबर और योर पेरेंट्स का नंबर या कोई तो एक नंबर होगा जो आपको याद होगा. सो इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमें पासवर्ड याद नहीं रहते लेकिन कुछ फ़ोन नंबर सालों तक याद रहते हैं. क्यों? क्योंकि हम नंबर्स याद नहीं रखते, हम इमोशंस याद रखते हैं. शायद वो घर का लैंडलाइन था, शायद किसी बेस्ट फ्रेंड का नंबर, शायद पहली जॉब का ऑफिस नंबर, या फिर कोई ऐसा इंसान जिसका नाम आज भी सुनते ही कहानी याद आ जाती है. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM. मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम यस ऑफ कोर्स मिडनाइट लाउंज. सो न्यूरोसाइंस कहती है कि जो मेमोरी होती है वो फैक्ट्स से ज्यादा इमोशंस को स्टोर करती है. इसीलिए कुछ डिजिट्स ना सिर्फ डिजिट्स नहीं रहते, वो एक पूरा चैप्टर बन जाते हैं. एक जमाना था जब नंबर्स डायरी में लिखे जाते थे, आज कॉन्टैक्ट्स फोन में सेव होते हैं और शायद इसीलिए यादें भी थोड़ी सी आउटसोर्स हो गई हैं. तो आज रात का सवाल है कि कौन सा फोन नंबर आपको आज भी याद है और उसके पीछे कौन सी कहानी छुपी है. फटाफट से एक वॉइस नोट भेज दो. 3311063 इज माई व्हाट्सएप नंबर. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव. स्टे ट्यून्ड. जियो बिंदास.

अच्छा चलिए थोड़ा सा हल्का फुल्का कन्फेशन करते हैं। अभी मैं फोन नंबर्स के बारे में बात कर रही थी, बहुत सारे मैसेजेस आए, बहुत सारी कहानियां सुनी, और हम सब ने जिंदगी में कभी ना कभी कुछ ऐसा खरीदा है जिसकी जरूरत हमें बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन उस वक्त लगा था कि यार यही चीज मेरी लाइफ बदल देगी। जैसे कि कोई फिटनेस मशीन, कोई वॉच, कोई जूसर, कोई फैंसी गैजेट, ऑनलाइन सेल का रैंडम प्रोडक्ट, मतलब आपने खरीद लिया और आपको लगा कि यार ये बहुत काम आएगा मेरी फिटनेस जर्नी के लिए, या मेरी रीडिंग जर्नी के लिए, या मेरी लर्निंग जर्नी के लिए। यू आर लिस्टिंग रेडियो ऑल ऑफ 106.3 FM, मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम मिडनाइट लाउंज। ये वो चीज़ है जो इंस्टाग्राम एड देखकर ऑर्डर कर दी थी, ठीक है, या फिर दो दिन एक्साइटमेंट रहा और तीसरे दिन उसका कोई यूज ही नहीं था, और फिर वो परमानेंटली किसी कपबोर्ड में यू नो अपनी जगह बनाकर बैठी हुई है। मार्केटिंग एक्सपर्ट्स कहते हैं कि हम प्रोडक्ट्स नहीं खरीदते, हम प्रोमिसेस खरीदते हैं। हमें लगता है कि ये वॉच मुझे डिसिप्लिन बना देगी, ये नोटबुक मुझे प्रोडक्टिव बना देगी, या ये गैजेट मेरी लाइफ ईजी बना देगा, लेकिन आखिर में लाइफ वही रहती है, बस थोड़ी सी जगह और कम हो जाती है। तो आज रात सच सच बताइएगा कि आपकी लाइफ की सबसे यूजलेस परचेस इन नाउ यू नो रीसेंट टाइम कौन सी है, और क्या आज भी वो आपके घर के किसी कोने में पड़ी हुई है। 3311063 इज माई नंबर, यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, मैं हूँ मुस्कान और ये है मिडनाइट लाउंज।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: ये है मिडनाइट लव।
2: ये है मिडनाइट।

वेलकम बैक. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM. मैं हूं मुस्कान और शो का नाम मिडनाइट लाउंज. कभी किसी ने आपको बचपन में कुछ बोला था और आपने उस बात को सच मान लिया. तू मैथ्स में वीक है, तू पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर सकती, तू क्रिएटिव नहीं है, तू लीडरशिप मटेरियल है ही नहीं. और प्रॉब्लम ये है, मान लिया तू मैथ्स में वीक है, तू पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर सकती, तू क्रिएटिव नहीं है, तू लीडरशिप मटेरियल है ही नहीं. और प्रॉब्लम ये है, एक्सपीरियंस इंसान को अपडेट करता रहता है, बस कभी कभी हम अपनी आइडेंटिटी अपडेट करना भूल जाते हैं. तो आज रात का आपसे सवाल भी है और आप एक बार सोचिएगा भी, क्या आपने अपने बारे में भी कभी ऐसी कोई बात सुनी जिसकी वजह से शायद आपका भी कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम हुआ और आपको लगा कि यार ये तो मैं नहीं कर पाऊंगी या नहीं कर

0: दोहा बैंक और लुलु लाए हैं शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
1: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलु मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलु शॉपिंग वाउचर।
0: लुलु स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलु पॉइंट्स के फॉर्म में।
1: प्लस एंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माई बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलु पर मिनिमम कतरी रियाल 1 स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
0: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026। दोहा बैंक लुलु मास्टर कार्ड प्लैटिनम, शॉपिंग नाउ मोर रिवॉर्डिंग। TNC अप्लाई। आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM। जियो बिंदास

एवरीडे आई टॉक अबाउट वन बुक, और आज किताब के साथ एक इंसान की भी बात करती हूँ. कल मैं एक फैक्ट पढ़ रही थी कि मोरक्को में एक बुक स्टोर चलाने वाले अंकल हैं जिनकी एज बहुत ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 70s-80s में है वो, और वो हर दिन 5 से 6 घंटे सिर्फ रीडिंग करते हैं. उन्होंने दुनिया भर में सबसे ज़्यादा किताब पढ़ने का रिकॉर्ड बनाया है, 5,000 से ज़्यादा किताबें पढ़ी हैं उन्होंने. आई वॉज लाइक कि काश मैं इनसे मिल पाती कभी, और काश कभी ऐसा होता कि मैं उनके एक्सपीरियंसेस को जान पाती, क्योंकि किताबें आपको बहुत कुछ सिखाती हैं. You are listening Radio All 106.3 FM. मैं हूँ मुस्कान, और शो का नाम, yes, of course, Midnight Lounge. So आज एक ऐसी ही किताब की बात करते हैं, Convenience Store Women. ठीक है, इस किताब का नाम है. और इंटरेस्टिंग बात यह है कि किसी किताब में ना ही कोई मिस्ट्री है, ना ही कोई लव स्टोरी है, ना ही कोई मोटिवेशनल फॉर्मूला है, फिर भी पूरी दुनिया में लोग इसे रिलेट करते हैं. कहानी एक जापनीज वुमेन की है जो एक स्टोर में काम करती है, और वो अपनी लाइफ खुद से बहुत खुश है. प्रॉब्लम क्या है? सोसाइटी खुश नहीं है. लोग उससे पूछते रहते हैं, भाई अभी भी यही काम कर रही हो, शादी कब करोगी, रियल करियर कब स्टार्ट करोगी. और मुझे लगता है कि हम सबने कभी ना कभी ये प्रेशर फील किया होगा यार, स्कूल के बाद कॉलेज, कॉलेज के बाद जॉब, जॉब के बाद प्रमोशन, प्रमोशन के बाद मैरिज, मैरिज के बाद घर कब खरीदोगे, घर कब खरीदने के बाद फिर कुछ और. जैसे लाइफ एक चेकलिस्ट है हम सब के लिए, और अगर आप उस चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हो तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं. लोग मतलब एक बुक सिंपल सवाल पूछती है कि ये क्या सक्सेसफुल लाइफ का सिर्फ एक ही वर्जन होता है, या हर इंसान को अपनी डेफिनेशन लिखने का हक होता है. सो आज रात का सवाल भी यही है, क्या आपकी सक्सेस की डेफिनेशन आपकी खुद की है, या किसी और ने आपके लिए चेकलिस्ट सेट की हुई है. 3311063 is my number. You are listening Radio Olive. मैं हूँ मुस्कान. Stay tuned to you. Bindas.

सो ये बात सुनते ही शायद आपको भूख लग जाए, लेकिन ये फेवरेट फूड वाला सवाल नहीं है। मैं पूछ रही थी कि ऐसी कौन सी डिश है जिसके लिए आप फ्लाइट पकड़ सकते हो, और मुझे लगता है कि आंसर फूड के बारे में कम और मेमोरीज के बारे में ज्यादा होंगे, क्योंकि टेस्ट सिर्फ जुबान पर नहीं रहता, एक याद में रहता है। साइंटिफिक रिसर्च कहती है कि स्मेल और टेस्ट का कनेक्शन मेमोरी के साथ बहुत स्ट्रांग होता है। अगर कोई मुझसे पूछेगा कि वो कौन सी चीज़ है जिसको खाने के लिए आप फ्लाइट पकड़ सकते हो, तो मैं हमेशा कहूँगी कि यार घर का टिकट, मम्मी के हाथ का खाना। और इसीलिए एक घर के खाने की जो स्मेल होती है आपको बचपन में लेकर चली जाती है, एक चाय की सिप आपको किसी पुराने दोस्त की याद दिला देती है, और एक डिश पूरे शहर की याद। शायद आपके लिए माँ के हाथ का राजमा चावल, या फिर केरला की कोई डिश, या फिर लखनऊ के कबाब, या फिर कराची की कोई ब्यूटिफुल सी डिश, या कोई तो एक चीज़ होगी जो आपको बहुत याद आती होगी। सो आज रात का सवाल भी वही है कि कौन सी डिश है जिसके लिए आप कल सुबह भी फ्लाइट पकड़ के निकल सकते हो और आपको लगेगा कि ये वर्थ है। 3311063 is my number. You are listening Radio Olive. Stay tuned. Jio. Bindaas.

0: 6.3 FM, Gio Bendaz.
1: Yeah, midnight love.
2: ये है मिडनाइट लव।

मुझे लगता है कि हर इंसान के अंदर एक हिडन चैप्टर होता है, एक ऐसा टैलेंट, कोई स्किल जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ऑफिस में जो सीरियस बंदा लगता है शायद घर जाकर स्केचिंग करता है, अकाउंट में जो है वो शायद अमेजिंग सिंगर हो, जो इंजीनियर है शायद पोएट्री लिखता हो। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम अक्सर लोगों को उनके प्रोफेशन से डिफाइन कर लेते हैं, डॉक्टर, टीचर, मैनेजर, ड्राइवर, लेकिन कोई भी इंसान सिर्फ अपनी जॉब नहीं करता, उसके अंदर भी कहानियाँ होती हैं। कभी कभी वही हिडन स्किल्स लाइफ को ना बहुत इंटरेस्टिंग बना देती हैं। और आज की दुनिया में लिंक्डइन प्रोफाइल सब देख लेता है, लेकिन इंसान का हिडन वर्जन बहुत कम लोग देख पाते हैं। सो आज रात का सवाल है आपसे कि आपकी वो कौन सी स्किल है जो आपकी सीवी में नहीं लिखी लेकिन आपको बहुत स्पेशल बनाती है। मे बी कोई सिंगिंग, डांसिंग, या फिर यू नो स्केचिंग, या फिर पेंटिंग। बाय द वे, अगर मैं अपनी ऐसी स्किल की बात करूं तो मुझे ना बस बातें ही करना आता है। सो आप मुझे अपनी स्किल के बारे में बताइए। 3311106 इज माई नंबर। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव। स्टे ट्यून्ड। जियो बिंदास।

सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। जियो बिंदास, ये है मिडनाइट लव।

खूबसूरत दर आपके मॉर्निंग को बनाएंगे बिंदास मॉर्निंग। सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास। आप सुन रहे हैं कतर का नंबर 1 रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3।

सो आज रात को यू नो बातें करते करते कब आपसे टाइम निकल गया पता ही नहीं चला. दिस इज लाइक लास्ट टॉपिक ऑफ टुडे. शायद सबसे इंटरेस्टिंग भी यही है कि इमेजिन कीजिए आपको एक टाइम मशीन मिलती है लेकिन सिर्फ एक घंटे के लिए, और सिर्फ एक डायरेक्शन है कि पास्ट या फ्यूचर, दोनों नहीं, मतलब या तो आप पास्ट में जा सकते हो या फ्यूचर में. अब आप क्या चूज करोगे? पास्ट, शायद किसी अपने से मिलने के लिए, किसी पुरानी याद को दोबारा देखने के लिए, किसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए, या फिर कुछ डिलीट करने के लिए, या फ्यूचर ये देखने के लिए कि दुनिया कैसी होगी, आप कहाँ होगे, टेक्नोलॉजी कितनी बदल चुकी होगी. लेकिन फिलोसोफर जो है वो, उनका एक यू नो कोर्ट में पढ़ रही थी, उनकी एक इंटरेस्टिंग बात है. सो उनके हिसाब से लाइफ कैन ओनली बी अंडरस्टूड बैकवर्ड्स बट इट मस्ट बी लिव्ड फॉरवर्ड्स. यानी हम आंसर पास्ट में ढूंढते हैं लेकिन जिंदगी फ्यूचर की तरफ चल रही होती है. तो आज रात का आखिरी सवाल पता है क्या है? अगर आपको सिर्फ एक घंटा मिले तो आप पास्ट में जाएंगे या फ्यूचर में, और सबसे पहले क्या देखना चाहेंगे? इस थॉट के साथ आई हैव टू से कि मुझे जाना होगा, पर यस यू कैन व्हाट्सएप मी, आई एम देयर विद द सेम नंबर 3311063. बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट, स्टे ट्यून्ड.

0: सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम।
1: बिंदास ये है मिडनाइट लव।
2: ये है

अभी तो पूरे शहर की इवनिंग होती है। ओहो।

0: भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे आरजे सिमरन के साथ जबरदस्त इवनिंग वो शाम 5 से 9 ओनली ऑन 106.3 रेडियो ओलिव जियो बिंदास
1: आरजे सिमरन के साथ
2: सिर्फ नंबर वन लोग सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM

listening to Radio Olive 106.3 FM Jio Bindas. अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है.

सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास

सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

96.3 FM, Gio Ben Dance.

सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास अब सुनिए

अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है। अब सुनिए

सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।